0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: मेरे नाल नाल जपो बस
1: हर प्रीतम के
0: सारे बोलो और सुनो भी देखना आज तुसी बोल के बाणी नू नाल अपने कन्ना नाल सुनो मैं की कह रहा वो बाणी अंदर दाखल हुंदी कि नहीं हुंदी देखना मेरा एक अर्ज है मेरी बेनती है

दर्शना दे नाल मन शांत होएगा, शरीर शांत होएगा और कुछ नहीं। हे प्रभु दर्शन दवो, दर्शन दवो प्रभु, मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, बिलप करे चातरकी न्याई, रिखा ना उतरे शांत ना आवे बिन दर्शन संत प्यारे जी। तेरे दर्शना तो बिना गुजारा नहीं होना, दर्शन दवो गल ही तां बननी, ते दर्शन कदी ना कदी दवेगा। अज भुख पैदा करांगे कल वो भुख पूरी होवेगी, साचे नाम की लगे भुख। फिर महाराज जी कहते ने साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाई। एहो जा नाम है बस एक बार वस गया सारियां भुखा शांत हो गई, सब भुखा भी मिट गई।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पूरब में जगन्नाथ विराजे, पश्चिम में द्वारिका ललाम, दक्षिण रामेश्वरम सुशोभित, उत्तर मंडित बद्रीनाथ धाम।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है, ये कहना है शादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूँ गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवत गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। ये हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक

0: इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
3: हंसते मुस्कुराते चेहरे वाकई दिल के करीब हो तो मुझे लगता है कि आपके दिन बन जाता है, प्रोग्राम बन जाता है। और ऐसी शख्सियत, हंसती मुस्कुराती शख्सियत हमारे साथ जुड़ रही है। राम राम दोस्त, आप सत श्री अकाल, आदा, मैं हूं नाचीज हरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं मेरे खास प्रोग्राम के माध्यम से, जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। चलिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था उसका इशारा यूं है कि मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनका नाम है रूही हक। आप टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर हैं लॉस एंजलिस से और आर्मी बैकग्राउंड से आप आते हैं। कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह है और यही एक वजह है कि वो खूबसूरत झलकती है इनके काम के माध्यम से। साथ ही साथ एक एनजीओ भी आप रन करती हैं, होप बी लिट, आप उसके फाउंडर हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेती हैं और आप एक फिल्म मेकर हैं, अच्छी लेखिका हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रूही हक जी।
4: आपका बहुत आभार।
3: कैसे हैं आप?
4: बहुत बहुत अच्छा, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा।
3: थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। शाम में कहीं कोई गुस्ताखी तो नहीं हो गई? ठीक है ना?
4: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो ये जो हंसने की जो अदा है, हंसते मुस्कुराते आप लोगों को कनेक्ट कर पाती हैं, लोगों से जुड़ पाती हैं, मुझे लगता है कि जब आपके साथ लोग जुड़ते होंगे तो निश्चित तौर पर उनके चेहरे पर आप मुस्कान ला पाते होंगे अपने काम के माध्यम से। जिस तरीके से आपने हमें बताया कि आप एक एनजीओ रन करती हैं, तो प्लीज बताइए अपने बारे में, उस एनजीओ के बारे में।
4: डेफिनेटली, होप बिलर जो मेरा एनजीओ है, जिसका मतलब है कि उम्मीद हमेशा कायम रहे सब में, वो एक ग्लोबल एनजीओ है, लॉस एंजलिस बेस्ड है, लेकिन हमारा काम एक्चुअली हर कॉन्टिनेंट में हो चुका है। हम लोग अफ्रीका जा चुके हैं, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑब्वियसली हम वहाँ बेस्ड हैं, और इंडिया में भी हमारे बहुत काम चलते हैं। और अभी हमारा रुख मेंटल हेल्थ की ओर जुड़ा है, बिकॉज सोशल मीडिया, जैसे कि आप जानते हैं, एक एपिडेमिक बनता जा रहा है अमंग्स द यूथ, तो हम उसमें आगे बढ़ना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ वेलनेस पे फोकस किया जाए। तो अभी हमारा जो नया विंग है वो उस पर काफी फोकस्ड है।
3: क्या बात है, बातों बातों में लिसनर्स एक इशारा हो चुका है कि जिस सब्जेक्ट पर हम बात करने वाले हैं, मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम बात करने वाले हैं। और सच बात तो ये कि भागती दौड़ती जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा खराब होता जा रहा है, जिसकी वजह से जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां हमारे सामने आ रही हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रूही हक जी। बहुत सारी बातों का जो सिलसिला लगातार जारी है, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। जब कम्युनिटी का हम जिक्र करते हैं यानी कि एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते समुदाय की बातें हम कर रहे होते हैं, और इसी संबंध में बात करने के लिए आज एक एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही है। आप हैं रूही हक, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर, लॉस एंजलिस बेस्ड इनकी कंपनी है और आप ग्रेटर नोएडा में है। और इस वक्त बहुत सारी बातें, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी, इनका जो एक एनजीओ है वो रन करती हैं होप बी लिट, जो कि एक सामाजिक सरोकार रखता है। और इस संबंध में जैसे कि मैं बात कर रहा था ऑफेयर कि ये लोगों के बीच में जाती हैं, उनके हक की बातें होती हैं, कहीं अंधेरा है तो उसकी ज़िंदगी में उजाला लगाने का काम करती हैं, उजाला लाने का काम करती हैं। तो जो एक विषय था, जो एक टॉपिक था, इशारा था कि हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करने वाले हैं। तो रूही जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कब आपको लगा कि मानसिक स्वास्थ्य के विषय में मुझे बात करनी चाहिए, कुछ सीखना चाहिए? आपने ये भी मुझे बताया था कि इसके बारे में आपने एक कोर्स किया है और सीखने समझने के लिए आप बाहर भी गए। कितना समय आपको उस कोर्स में लगा और क्या आप महसूस करती हैं कि किस वजह से लोगों का स्वास्थ्य डिस्टर्ब है मेंटल हेल्थ के लिए?
1: तो हमारे मेरा जो नॉन प्रॉफिट है उसमें 3-4 विंग्स हैं, और एक ओरल हेल्थ हमारा एक फोकस रहा है जिसमें कोलगेट, हेनरी शाइन जैसे बहुत बड़ी कंपनीज जुड़े हैं। मैंने देखा था कि ओरल हेल्थ में ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है, सिर्फ बताया जाता है क्या बीमारी है। तो वो हमारी शुरुआत थी, और हम लोग लॉस एंजलिस स्कूल्स में ह्यूमन वैल्यूज विद एजुकेशन पे भी काम कर रहे थे। अब इस सब के दौरान जब हम मेंटल होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं, हमने देखा कि कैंप्स में हम बाकी सर्विसेज फिजिकल फोकस दे रहे थे और मेंटल एपिडेमिक बहुत ही ऑब्वियस वे में, जो कि अभी आप देख रहे हैं दुनिया के हालात हैं, बहुत डिस्टर्बिंग रहता है। और एक सोशल मीडिया स्क्रोलिंग में आई एम श्योर कि सब लोग कनेक्ट होंगे कि जब आदमी स्क्रोल करता है तो उसकी जो न्यूरोलॉजिकल सेंसेस हैं वो कितने सेंसरी चेंजेस उसमें होते हैं, ये जब आप रिसर्च करेंगे तो यू विल बी रियली शॉक्ड। और वो सब मैं उसमें घुसी क्योंकि मैं जब काम कर रही थी गांव में या शहर में बच्चों के साथ, यूथ के साथ, पेरेंट्स के साथ, मैं देख रही थी कि मेंटल हेल्थ जो हम इग्नोर कर रहे हैं वो एज एन एपिडेमिक बढ़ता ही जा रहा है। बिकॉज फिजिकली तुम टच करके निकल सकते हो, लेकिन मेंटली बहुत चीजें फिजिकली आपको अल्टीमेटली यू नो इफेक्ट करती हैं। तो जड़ से उस चीज को उखाड़ने के लिए दोनों चीजों पे ध्यान देना चाहिए। और सोशल मीडिया आजकल जो कि एक यू नो बून है, हैज आल्सो बिकम अ कर्स। इट्स अ वेरी थिन लाइन। तो वो थिन लाइन पे मुझे फिर जब फोकस हुआ तो मैंने कहा फिर मेंटल हेल्थ, ब्रेथ वर्क जैसे हमारे प्राणायाम है, मैं योगा टीचर रह चुकी, मैंने ऋषिकेश में किया हुआ है। लेकिन वो क्या होता है कि इंडिया में हम बहुत वास्ट, अब कौन सा बच्चा इतना लंबा प्राणायाम का कोर्स करेगा? बट एक सोमैटिक ब्रेथ वर्क, मैंने रेफ्यूजी कैंप्स में काम किया है तो जैसे बॉम्ब के बाद पैनिक होता है उसमें कितने सिंपल ब्रेथ टूल्स कितना इम्पैक्ट करते हैं, लोगों की जनरेशनल ट्रॉमा कैसे आती है। तो ये सब बेसिक चीजें जो कि 3-4 मिनट में आप एक दो चीजें छोड़ के जा सकते हो, मुझे वो बहुत इंटरेस्ट आया और मैं उसमें फिर मैंने 3-4 कोर्सेस किए।
0: सो लिसनर्स, कहने का मतलब ये है कि यहाँ जिक्र हुआ मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, और बात हुई योग के बारे में। सच बात तो ये कि भागती दौड़ती जिंदगी में अगर आपने संतुलन नहीं बनाया तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने बहुत ज्यादा आ सकती हैं। और जब योग का जिक्र हुआ है तो मैं कहूंगा कि आप योग करिए, अपने आप को निरोग रखिए और देखिएगा कि जिंदगी पहले से बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आप चाहते हैं कि आप रुपया कमाएं, आप ये भूल जाते हैं भागती दौड़ती जिंदगी में कि आपकी सेहत आपसे दूर जा रही है, कोसों दूर जा रही है, और वही रुपया आपकी सेहत को तंदुरुस्त बनाने के लिए खर्च होता है जब आप बीमार होते हैं। और ऐसे ही आप मानसिक बीमार हैं, मानसिक रोगी हैं। इसी संबंध में बात करने के लिए, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में बात करने के लिए मेरे साथ एक एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ी हुई हैं रूही हक जी। बातों का जो सिलसिला लगातार जारी है सो कहीं जाएगा मत। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ये है ग्रेटर नोएडा का आपका अपना रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ और एक्सपर्ट के तौर पर आज मेरे साथ जुड़ रही है रूही हक जी, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर, लॉस एंजलिस बेस इनकी कंपनी है और कश्मीर से ताल्लुक रखती है। साथ ही साथ आर्मी बैकग्राउंड से भी आप आते हैं और खुद का एक एनजीओ है जिसका नाम है होप बी लिट। आप उसकी फाउंडर हैं, लोगों के बीच में जाती हैं, बच्चों के बीच में आप जाती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो एक बार फिर से रूही जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: कैसा लगता है जब आप लोगों के बीच में जाती हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके दुख को आप पहचानती हैं, उनके दुख को दूर करने का काम करती हैं। मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि आप लोगों के बीच में रोशनी लाने का काम करती हैं और सच में आप रोशनी ला रहे हैं, क्योंकि आपने हमें बताया था कि आप लोगों के जहाँ लोग रहते हैं वहाँ अंधेरा है, वहाँ लाइट्स नहीं है, आप लाइट्स तक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कुल मिला के कह सकता हूँ कि आप नो डाउट कि आप लोगों के जीवन में रोशनी ला रहे हैं। तो कैसा फील करते हैं जब आप लोगों से मिलती हैं धरातल पर, ऑन ग्राउंड?
1: तो एक चीज मैंने देखी है कि क्योंकि मेरे डैड आर्मी में थे तो हम हर दो साल में नए शहर जाते थे, तो वो अडेप्टेबिलिटी बहुत आनी पड़ती है, मतलब कोई चॉइस ही नहीं है। हर दो साल आप नए लोगों से मिलते हैं और नए लोगों की कल्चर और उनका उनके अलग दुख और उनके अलग सुख वो सब देखना पड़ता है। तो इसी के साथ में बड़ी हुई और फिर कहीं भी जाना, किसी भी देश में जाना, बहुत ही कंफर्टेबल फीलिंग आती है कि सभी अपने हैं। यही सिखाया जाता है फौज में कि हम सभी एक देश के हैं और सभी अपने हैं। बट ये मैंने नोटिस किया कि हम लोग जब से रोड में भी चलते हैं या कहीं पे भी होते हैं, अगर हम अपने कम्युनिटी में ही देखें तो हमें बहुत ऐसे अपॉर्चुनिटीज दिख जाएंगे जो कि काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं। तो आई थिंक वही मैंने इग्नोर नहीं की और इसलिए मुझे ये सारी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। जैसे मैं कनॉट प्लेस में थी और वहाँ मैंने ये जगह देखी जो कि एक इतनी लिट अप एरिया के बीच में है और इतने अमीर एरिया के बीच में, और वहाँ पे सवेरे जाने के लिए आपको अपने फोन के टॉर्च की आवश्यकता पड़ती है। और जब आदमी का दिमाग एक इतने उजाले से, वो भी यू नो मई की धूप में दिल्ली में एक अंधेरे गली में जाता है 12 बजे दोपहर को, वो भी एक जारिंग मेंटल एस्पेक्ट होता है। तो वो मैं इतनी बार गई वहाँ कैंप करने, मैंने वहाँ ओरल कैंप किया, हेल्थ कैंप किया, लेकिन ये लाइट मुझे हमेशा खटकती रही और मैं उनसे पूछती रही कि आपको क्यों नहीं खटक रही है। तो लोगों ने कहा कि हाँ आदत हो गई है, लेकिन ऐसी आदतें क्यों हम डालें। तो मैं सोच रही थी पहले कि गवर्नमेंट से बात करूं, क्या करूं, लेकिन फिर मेरे को सोलर लाइट का आया, बिकॉज सस्टेनेबल एनर्जी वैसे भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है और इसमें किसी को बिल नहीं आता है और धूप यहाँ बाकायदा रहती है। तो मैंने बहुत सारे पैनल्स और ये सब में हमने ट्रायल किए, क्योंकि मैं खुद, मेरे को केबलिंग वगैरह का बहुत शौक है और इस कॉलोनी में इतने केबल्स हैं, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट रहा कि रूफ से वो केबल नीचे कैसे आएगा और किस लाइट से जुड़ेगा और उसकी कैपेसिटी किस कितनी मेगाहर्ट्ज की रहेगी। तो एज अ प्रोजेक्ट मैंने उसको उठाया और आज की डेट में हमने काफी स्ट्रीट्स को लाइट दे दी है। और मतलब मैं जब उन गलियों में जाती हूँ तो लोग आके बोलते हैं कि दीदी हम गिर जाते थे और आज हम खेल पाते हैं यहाँ पे, और अब मुझे सिक्योरिटी लग रही है और अब मैं कैमरा लगाने की सोच रही हूँ विद व्हाट्स गोइंग ऑन। तो यही है कि आदमी अगर चाहे तो बहुत आसानी से अपने दोस्तों के बीच में ही कर सकता है। और मैंने अपने दोस्तों के साथ ही शुरू किया, मैंने इंतजार नहीं किया कि कोई बड़ी एनजीओ आएगी और कुछ काम करेगी, और ये हर इंसान कर सकता है, बस अपने दिल और दिमाग को खुला रख के देखे तो फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी।
0: बहुत खूबसूरत एक शेर है, मैं अकेला चला था जानिब मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवा बनता गया। और कहते भी है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा तो मिलकर बोझ उठाना। मैं समझता हूँ कि ये जो पहल होती है वही एक टफ समय होता है, जहाँ एक शुरुआत हो जाती है तो निश्चित तौर पर 10 लोग आप महसूस करते होंगे कि 10 लोग आज आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपकी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, एनजीओ के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वही कश्मकश में अगर इंसान रुक जाए, थम जाए, बैठ जाए, तो मुझे लगता है कि उसका जो सपना है वो सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। अरुई जी, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कुछ मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कि जब आप इन लोगों के बीच में जाती हैं तो किस तरीके की दिक्कतें, परेशानियां इनके सामने और आती हैं, चूंकि मेंटल हेल्थ का जो एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो कोई एक ऐसा गाना जब आप बहुत परेशान रहती हैं, दिल को सुकून चाहती हैं, म्यूजिक के आसपास आप रहती हैं क्योंकि आप एक फिल्म मेकर हैं, तो एक गाना जो आप हमारे लिसनर्स को सुनाना चाहती हूँ वही गाना हम आपके लिए, अपने लिसनर्स के लिए प्ले करेंगे।
1: मुझे तो बहुत पुराने गाने पसंद है,
0: चलेगा,
1: तो वो है ना, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, वो मेरा बहुत फेवरेट।
0: बहुत खूबसूरत लाइन है, बहुत खूबसूरत लाइन है। तो चलिए दोस्तों, ये गाना हम आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं, तो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो में मेरे साथ एक खास मेहमान है। आप एनजीओ रन करती हैं, आप उसकी कर्ता धर्ता हैं, यू कहें अंग्रेजी में तो फाउंडर हैं। एनजीओ का नाम है होप बी लिट और आप टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, यानी कि एक तरफ ये काम चल रहा है, दूसरी तरफ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। लॉस एंजलिस बेस्ड आपकी कंपनी है और कश्मीर से आप ताल्लुक रखती हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। और वही जो खूबसूरती है वो आपके अंदर व्यक्तित्व में झलकती है कि लोगों से मिलना, बातचीत करना, उस मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ना। आप है रूही हक जी, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
0: ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। क्या महसूस करती हैं जब आप धरातल पर जाती हैं, ऑन ग्राउंड जाती हैं, कि उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से वो मानसिक अस्वस्थ हैं, वो खुश रहना चाहते हैं, वो चाहे रुपयों की बात हो, चाहे वो एक लाइट का एग्जांपल हो जैसे आपने हमें खुद बताया, इसके अलावा पढ़ाई की बातें हैं, घर गृहस्थी की बातें हैं, घरेलू हिंसा है, तो किस तरीके से उनको आप दूर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं?
1: मैं साइकियाट्रिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने थेरेप्यूटिक टूल्स किए हुए हैं, तो ये जो टूल्स होते हैं वो ज़्यादा आई थिंक ईजी होते हैं टू मैनेज, बिकॉज हमारा अटेंशन स्पैन भी बहुत कम है आज की डेट में। तो वो टूल्स सिंपल एक क्राई होता है, जैसे मैं से अफगानिस्तानी वुमेन, या फिर अभी रेफ्यूजी कैंप्स में हम लोग जॉर्डन में थे मिडल ईस्ट में, तो वहाँ की औरतों के साथ अगर वो एक रोर होता है, ये सिंपल टूल्स होते हैं जो कि मतलब पीपल यू नो पीपल कैन गूगल, इससे इतनी यू फील सो इंडिपेंडेंट बिकॉज यू जस्ट स्पेंड टू मिनट्स डूइंग दैट लिटिल थिंग। तो ये जो टूल्स हैं ये बहुत पावरफुल हैं और गूगल करके लोगों को मिल सकते हैं। बट मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो जब हम लोग खुद ग्राउंड पे जाते हैं तो हमारे खुद का मानसिक स्वास्थ्य, बिकॉज यू हैव टू बी स्ट्रांग, किसी का दुख देखना इतना आसान नहीं है, स्पेशली क्योंकि उसको वो दुख हो रहा है, उसको वो तकलीफ हो रही है और आप सिर्फ देख रहे हैं। तो दोनों जगह ये चीजें कायम रहती है कि आपको अपना मानसिक स्वास्थ्य पहले तो ठीक रखना पड़ता है, यू हैव टू रिमेन स्ट्रांग। जैसे मैंने रेप के ऊपर जब मूवी बनाई थी, लोगों ने कहा आपका रेप हुआ क्या? जब मैंने कैंसर के ऊपर बनाई तो बोला आपको कैंसर था क्या? तो वो ये ना कि तुमको नहीं होता है फिर भी वो फीलिंग
0: करना पड़ता है,
1: फील करना और करना चाहिए। हम इंसानियत तो वही है,
0: तभी काम कर पाएंगे,
1: तभी काम कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या लेवल है उसके पेन का, एंड यू कैन नेवर बी इन देयर शूज, उनका जो उनके साथ चल रहा है। और मानसिक स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि ओ माय गॉड मेंटली अनस्टेबल है और बहुत ऑब्वियस चीज है। आजकल सटली सबके मानसिक में एंग्जाइटी और सोशल नर्वसनेस, आप देखिए कि इंटरनेट नहीं होने से क्या पागलपन होता है किसी घर में, जबकि खाना नहीं मिलने से वो पागलपन मैंने नहीं देखा है।
0: सही कहना।
1: तो ये जो चीजें हो रही हैं इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और आज का जो जेन ज़ी और जो यूथ है वो सबसे ज्यादा इससे सफर कर रहे हैं, बिकॉज जो एडल्ट्स हैं वो उसको इतनी खुद वो व्हाट्सएप की दुनिया में खोए हुए हैं।
0: मैं इसी बात पर आ रहा था, मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है हमारी जिंदगी में, हम खाना खा रहे हैं, इवन हम बड़े हैं, हम अपने आप को छोड़ते हैं, हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चे इतने आदी हो चुके हैं, अगर बच्चा हमारा रो रहा है हम उसको मोबाइल दे देते हैं, वो चुप हो जाता है और ये जिंदगी में रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो गया है। अब मैं बड़ों की बात करता हूँ, आप और हम बैठे हैं, आप प्रोग्राम कर रही हैं, मुझे जरा सा भी गैप मिल रहा है, मैं सोशल मीडिया की तरफ जा रहा हूँ, मेरे बॉस का कोई मैसेज तो नहीं आया, कहीं से कोई कॉल तो नहीं आया, कहीं से कोई मैसेज मिस तो नहीं हो गया, ये जो सोशल मीडिया का हम से इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं, तो कितना सही है कितना गलत है, कैसे हम अपने आप को इससे बचा कर रखें ताकि जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो स्ट्रांग रहे?
1: ये बहुत ही थिन लाइन है, बिकॉज हम खुद उन बच्चों को बोल रहे हैं कि पढ़ाई के लिए भी वहीं जाओ जहाँ पे इनको बाकी सारी चीजें मिल रही हैं। और इसलिए साइबर ट्रोलिंग, राइट, बिकॉज आपको इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए क्या कहा मेरे पोस्ट पर, ये कब रेलेवेंट हो गया इतना ज्यादा, ये कितनी जल्दी इतने सालों में पार हो गया हमें पता भी नहीं चला, करेक्ट। और वो व्यूज सही भी हैं, गलत भी हैं, आजकल तो फेक भी हैं, और ट्रोलिंग फेक है, और अब AI आ गया है, तो AI बेस्ड हमने देखा है अमेरिका में बहुत ज्यादा ट्रोलिंग और एक्सटॉर्शन हो रहे हैं, बिकॉज AI कैन डू एनीथिंग, इट कैन पुट यू वेयर यू वर नेवर देयर, और वो कितना डेंजरस है। और इसलिए हम लोग इसमें जाना चाह रहे हैं कि हाउ यू कैन पुल दोज डाउन, जो चीज ऊपर जा सकती है इंटरनेट पे वो नीचे भी आ सकती है, ये वो एक्सटॉर्शन करने वाला भूल जाता है, लेकिन जो विक्टिम है वो ना भूले, वो एफर्ट है हमारी। अब
0: फाइनली अगर मैं इस रैप अप करूं इस प्रोग्राम को, फाइनली आपकी तरफ से अंत में क्या संदेश होगा, हमारे जो लिसनर्स हैं क्या कहना चाहती हैं और किन भविष्य की योजनाओं के साथ आप आगे बढ़ रही हैं, तो बस आप अपनी बात रख सकते हैं।
1: डेफिनेटली हमारा इनफैक्ट होने वाला एक कुछ इवेंट्स हम कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया और ग्लोबली ऑल्सो, और एक व्हाट नाउ फाउंडेशन करके है जो मुंबई बेस्ड है। डेफिनेटली प्लीज अपने यूथ को बोलिए कि दे लुक इट अप, एंड वो लोग सर्विसेज दे रहे हैं, काउंसलिंग दे रहे हैं, पुलिस सपोर्ट दे रहे हैं और साइबर सेल सपोर्ट दे रहे हैं, जिससे कि अगर कोई एक्सटॉर्ट हो रहा है तो वो चुप ना रहे, पेरेंट्स के साथ मिले, अपने शेयर करे, बिकॉज वो सबसे पहला डर होता है कि ये मैं नहीं थी लेकिन कौन मेरा विश्वास करेगा, ये मैं नहीं था और कौन मेरा विश्वास करेगा. तो पहले वो उनके पास जाए, उनसे मिले, काउंसलिंग ले खुद की, और फिर यू नो पुलिस के पास जाए, और ये चीजें हटाई जा सकती हैं, मिटाई जा सकती हैं. टेक्निकल टूल्स आर एज पावरफुल फॉर द इविल एज दे आर फॉर द गुड.
0: सो हाउ टू कनेक्ट
1: व्हाट नाउ और होप बिलेट, दोनों के सोशल मीडिया पे जाएं, वहां पे कुछ नंबर्स भी लोकल दिए गए हैं जो कि वो कॉल कर सकते हैं एंड सपोर्ट विल स्टार्ट राइट देयर.
0: ठीक है, सोशल मीडिया का कोई लिंक अगर आप शेयर करना चाहें, कोई पर्टिकुलर कोई नंबर हो जो आप बताना चाहें जिसके जरिए,
1: तो होप बिलेट दे कैन गो ऑन होप बिलेट एट HOPEBLIT एंड दे कैन ऑल्सो गो ऑन एट WHTNOW ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे नंबर्स मिल जाएंगे. दे कैन रीच अस, मैसेज अस डायरेक्टली. मेरा खुद का अकाउंट है @RUHELZ जिसका नाम है रू हील्स. कोशिश जारी है हीलिंग की, खुद की भी और लोगों की भी. तो वहाँ पे जुड़े और मैसेज करें और उनको डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा.
0: हमारी दिली दुआएं आपके साथ हैं, आप यूं ही निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि आप लोगों के जीवन में रोशनी लाने का काम कर रहे हैं, वाकई बहुत नेक काम कर रहे हैं. मेरी दिली दुआएं, शुभकामनाएं आपके साथ.
1: थैंक यू सो मच. आप गगन है तो हम रूह हैं.
0: हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे. तो मेरे साथ लिसनर जुड़ी रही रूही हक, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर, लॉस एंजलिस बेस्ड आपकी कंपनी है, और जैसे कि मैंने बताया कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और होप बी लिट एनजीओ आप रन करती हैं, और बहुत अच्छा विषय जिस पर हमने बातें की मेंटल हेल्थ के बारे में. ये विशेष कार्यक्रम, ये खास प्रोग्राम आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप मुझे कॉल कर बता सकते हैं. इसके अलावा 90.8FM@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं, और कभी मुलाकात करना चाहते हैं तो शारदा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे हैं वो आप सबके लिए खुले हुए हैं. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन. सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ. हम दोनों को दीजिए अनुमति. नमस्कार.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी

ऑक्यूपेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: महावारी के दौरान क्या करें और क्या ना करें। महावारी के दौरान एक ही पैड का लंबे समय तक बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए।
1: आप किसी भी ब्रांड के सैनिटरी पैड का उपयोग कर सकते हैं। महावारी के समय दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार सैनिटरी पैड को बदलना चाहिए। पैड को ज्यादा गीले होने पर वो फट सकता है, जिससे सैनिटरी पैड में मौजूद हानिकारक रसायन आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
0: याद रखें, महावारी के दौरान स्वच्छता का महत्व और बढ़ जाता है। गंदे, मलिन, अस्वच्छ हाथों से सैनिटरी पैड बदलने से हेपेटाइटिस बी जैसे वायरस और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।
1: कभी कभी योनि पर पानी का अत्यधिक छिड़काव उसे बैक्टीरिया के संपर्क में ला सकता है। योनि एक ऐसा अंग है जो खुद को स्वयं साफ कर सकता है, इसलिए उसे ऐसे ही छोड़ दें।
0: असुरक्षित यौन संबंध अपने आप में बहुत जोखिम भरा है और ऐसे में रक्त स्राव का मिलना और जोखिम भरा हो जाता है। महावारी के दौरान यदि महिलाएं असुरक्षित यौन संबंध बनाती हैं, तो यौन जनित रोग हेपेटाइटिस बी और HIV का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
1: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
0: ये खास जानकारी आप सुन रहे थे सुनो शारदा 90.8 FM पर यूनिसेफ के सहयोग से।

राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 9:01 हो चुके हैं। 18 तारीख है यानी कि बृहस्पतिवार, गुरुवार बोले तो थर्सडे का दिन। ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। फिलहाल इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, सो डोंट गो एनीवेयर। स्टूडियो ऑल यू सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
3: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
2: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
3: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
2: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
4: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
2: शारदा। बाय द स्टूडियो क्लॉक 9:10 हो चुके हैं। 18 तारीख है, बृहस्पतिवार। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज दिल्ली एनसीआर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मौसम मुख्य रूप से साफ और आंशिक रूप से बादलों का रहने वाला है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है और ग्रेटर नोएडा में आसमान की जो स्थिति है बादल साफ रहेगा, तेज धूप रहेगी और गर्मी का एहसास यकीन मानिए कि सुबह से आप और हम महसूस कर रहे हैं। हवा की जो रफ्तार है 8 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 11 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है और AQI ग्रेटर नोएडा में इस वक्त 161 यानी कि खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है और इसलिए बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। चेहरे पर मास्क जरूर लगाएगा क्योंकि धूल के कण आसपास आप देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल ही रहा है और ऊपर से गर्मी का एहसास, तो पानी भरपूर पीजिएगा। और इसके अलावा नोएडा का जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 40 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। और साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर यानी कि अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो अधिकतम टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहेगा। बारिश का अलर्ट जो है वो दिल्ली के कुछ हिस्सों में दोपहर या शाम के समय हल्की यानी कि लाइट रेन या गरज के साथ बूंदाबांदी देखी जा सकती है, जिससे गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर मौसम का जो मिजाज है वो जो अपडेट है वो मैंने आप तक पहुंचा दी। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा और अक्सर हम देखते हैं कि ऑन रोड जब आप चल रहे होते हैं गूगल मैप को आप फॉलो करते हैं। हमने ये भी देखा है कि गूगल मैप को फॉलो करते वक्त कई दुर्घटनाएं घटी हैं और अभी एक ऐसी दुर्घटना हमारे सामने आ रही है, उसके बारे में बातें करेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन सुर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अरे भैया रामू।
2: हाँ भैया श्यामू।
1: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो,
3: क्या हाल?
2: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
1: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
2: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
3: तो अभी चलो।
0: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: बिल्कुल आपने सही सुना कि सुनो शारदा 90.8 FM आप सुन रहे हैं। जब भी आप ऑन रोड निकलते हैं तो जाहिर सी बात है कि हंसते खेलते आप आगे बढ़ रहे होते हैं, म्यूजिक आप सुन रहे होते हैं, गाना गुनगुना रहे होते हैं, कभी बाइक पर होते हैं, कह रहे होते हैं, गा रहे होते हैं कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो बाबू शायद किसने जाना। सच बात तो यह है कि कल क्या हो किसने जाना, लेकिन कल हमें बेहतर बना रहा है, कल को हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हमें पता है कि जब हम अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी हेल्थ के लिए। लेकिन जाने अनजाने में जब कोई घटना दुर्घटना घट जाती है तो उससे हम अपने आप को कैसे बचा कर रखें। जी हाँ, मैं बात कर रहा था ब्रेक पर जाने से पहले गूगल मैप का हम इस्तेमाल करते हैं, हमें वहाँ जाना है, उस गंतव्य स्थान तक पहुँचना है तो हम मैप के जरिए वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और लोग पहुँचते भी हैं। लेकिन जब अनजाने रास्ते होते हैं तो पर मुझे ऐसा लगता है कि आप उस रास्ते पर स्लोली स्लोली आगे बढ़िए, चाहे वो दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो। अभी कुछ रोज पहले की घटना को मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इसके बारे में जब सामुदायिक रेडियो पर मैं पहुंचता हूं तो मुझे बात करनी चाहिए, लोगों को अलर्ट करना चाहिए। एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का फर्ज भी यही है कि हम आपको सावधान करें। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। गूगल मैप के जरिए एक भाई साहब आगे बढ़ रहे थे और ये दो रोज पहले की घटना है, और वो आगे बढ़ते बढ़ते एक गड्ढे में गिर गए। वो भाई साहब मेरठ की तरफ जा रहे थे और गूगल जो मैप है उसका अनुसरण कर रहे थे, अर्थात उसको फॉलो कर रहे थे। वो रास्ता भटक गए और कार एक गहरे नाले में जा गिरी। और तो घटनाएं घटती रहती हैं लेकिन हमें उनसे अपने आप को बचा कर रखना है। घटना इतनी ज़्यादा घट जाती है कि जनधन हानि होती है, लेकिन खबर यहाँ ये रही कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मेरा कहने का आशय सिर्फ यही है कि हमें अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए होशो हवास में गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ना है जब आप गूगल मैप को फॉलो कर रहे हैं, और जब आप गूगल मैप को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं तो सुरक्षित चलना है, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुँचना है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। हाँ, ऑफिस में बॉस, घर पर सुपर बॉस, गुड मॉर्निंग।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: एक खबर से खबरदार मैं करना चाहूंगा और खबर को मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा।
1: हाँ बताओ।
2: करीब 2 महीने की नाकाबंदी के बाद ईरान का तेल निकल गया। ये क्या खबर है? ये कोई खबर है? क्यों, तेल निकलना खबर नहीं है? 2 महीने से हो हुर्मुज, हाँ हुर्मुज बंद था, वहां से कच्चा तेल नहीं निकल पा रहा था, वहां से ईरान का कच्चा तेल निकल गया, तो इसमें खबर नहीं है? सबसे बड़ी खबर है।
1: हाँ खबर तो है, ईरान का कच्चा तेल वहां से निकल गया। सच बात तो ये कि यही हम सब दुआ कर रहे थे कि चैन हो, अमन हो, सुकून हो। भारत की खूबसूरती है कि भारत ये अक्सर कहता रहता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और यही शुभकामनाएं अगर आप इबादत करते वक्त, पूजा करते वक्त मांगते हैं तो मैं समझता हूं कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी आपके साथ होगी नहीं। जैसी सोच वैसी नीयत आपकी है तो मुझे लगता है कि वैसे ही आसपास हम होते चले जाते हैं, हमारे आसपास वैसे ही वातावरण बनता चला जाता है। चलिए, बहुत अच्छी खबर। और इस खबर के बाद मुझे लगता है कि जो दिक्कतें परेशानियां हम सबके सामने थी वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आएगी। लेकिन दिक्कतें परेशानियां कम हो इसके लिए NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बार कमर कस लिए 21 जून को।
2: हाँ वो 21 जून को योग दिवस पे क्यों कमर कसेंगे? टेल मी इन डिटेल, टेल मी, मुझे बताओ क्यों कसेंगे कमर?
1: इसके बारे में बात करेंगे जरूर अगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।
2: मैं तो हूं ही नहीं।
1: अरे मेरे साथ बहादुर भी होते हैं।
2: बड़ी बहादुरी के साथ हम दोनों सामना करते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ गगन, आपके साथ
1: मतलब बहादुर।
2: हाँ
3: यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क जाँच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
4: टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
3: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:45 हो चुके हैं, 18 तारीख है यानी कि बृहस्पतिवार, बोले तो गुरुवार, बोले तो थर्सडे का दिन। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि 21 जून के बारे में हम बात करेंगे। 21 जून यानी कि योग दिवस, 21 जून यानी कि बड़ी बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं इस दिन का, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का यानी कि नीट की जो पुनः परीक्षा होने जा रही है वो 21 जून को होने जा रही है, रविवार को। इसमें कहीं कोई फेरबदल नहीं है, कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही थी लेकिन कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एडमिट कार्ड स्टूडेंट्स ने डाउनलोड करना शुरू कर दिया है और एक्स्ट्रा टाइम की भी खबरें हमारे सामने आ रही हैं यानी कि 2 बजे से लेकर शाम के 5:15 तक यानी कि 15 मिनट टाइम पहले एग्जाम के मुकाबले में इसमें ज्यादा दिया जाएगा। और एनटीए ने छात्रों की सुविधा के लिए रफ वर्क के लिए पन्नों की जो संख्या है वो 4 पेज कर दिया है। परीक्षा का जो मोड है हम सब जानते हैं ऑफलाइन है। और इसके अलावा जो बात निकलकर सामने आ रही है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और यूं समझ लीजिए कि लॉकडाउन जैसी स्थिति रहने वाली है। गड़बड़ी से बचने के लिए पेपर सेट करने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ट्रांसलेटर्स को परीक्षा खत्म होने तक डिजिटल गैजेट्स के बिना एक यूं समझ लीजिए कि एक सीक्रेट स्थान पर आइसोलेशन में रखा जाएगा। वायुसेना की मदद ली जाएगी और टेलीग्राम पर अस्थाई रोक लगा दी गई है 22 जून तक। तो ये जो सारी गतिविधियां हैं इनको जानिए समझिए और बस बच्चा लोग अच्छा करेगा, रिजल्ट आपका अच्छा आना चाहिए। आप परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं, सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा, तनाव मत लीजिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर। स्टूडियो ऑल यू सुरक्षा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

धुरंधर फिल्म का इस टाइटल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू शादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। अब बात कर लेते हैं खेल जगत में क्या खास हो रहा है। खेल जगत में इस वक्त क्रिकेट और फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। फिलहाल मैं बात करना चाहूंगा क्रिकेट की। वैभव सूर्यवंशी के ऊपर जो सबकी निगाहें थी कि वैभव को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैभव को जिसने उकसाया उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, तो वो तो रही एक बात, उसके खिलाफ अनुशासनहीनता को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई हो रही है। कुछ मैच फीस कटेगी वो कट रही है। दूसरी बात ये कि कल जो कैच पकड़ा है वैभव सूर्यवंशी ने, वो समझ लीजिए कि वायरल हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। और यूं समझ लीजिए कि जो आलोचक हैं, जो उस कैच की वजह से वैभव ने उनको जवाब दे दिया है ना। और खालिद तनवील का जो अंशुल कंबोज की गेंद पर जो जबरदस्त कैच हमने सामने देखा, तो बहुत फुर्ती नजर आ रही है, शानदार टाइमिंग है, जबरदस्त एथलेटिज्म दिखाते हुए मुश्किल कैच को बहुत आसान बना दिया। एक बार कैच पकड़ा है, छूटा है और एक दो कदम यूं समझ लीजिए कि बड़ा मुश्किल था। वाकई बल्ले बल्ले, लख लख बधाई, बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो 28 गेंदों में 38 रन की तेज पारी खेली और प्रियांश के साथ पहले विकेट के लिए 75 रन उन्होंने जोड़े और 36.5 ओवर में 218 रन पर ही अफगानिस्तान ए की टीम सिमट गई। और फाइनल में भारत ने जगह अपनी बना ली है, तो इस बात के लिए लख लख बधाई, बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ सोनू शारदा 90.8 एफएम पर।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: वक्त का इशारा, मैं होता हूँ 9:11। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की आवश्यकता। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरुशाता 90.8 FM। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूँ आपके साथ और स्टूडियो की घड़ी में लगभग 10 बजने वाले फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
2: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। भाई, जो कहते हैं सच कहते हैं कि प्रथम सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है घर में माया, तीजा सुख है पुत्र आज्ञाकारी। इस तरीके से कई सारे सुख बताए गए हैं, लेकिन सुख सबसे बड़ा बताया गया है कि अगर आप निरोग हैं, आपकी काया निरोगी काया है, तो वो सबसे बड़ा सुख है। इस सुख का यहाँ डिस्कशन करने का मतलब और मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक खास कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया गया, जिसमें सुनो शारदा 90.8 एफएम ने इस प्रोग्राम को कवर किया सेक्टर 39A नोएडा उत्तर प्रदेश यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जहां हमने पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन अवार्डी, इंडिया फर्स्ट वुमन पैरालंपिक मेडलिस्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया डॉक्टर दीपा मलिक, जो कि टीबी एम्बेसडर है, उनसे मुलाकात की।

0: और उससे पहले तमाम डॉक्टर्स को हमने सुना, बहुत सारी बातें हुई। क्या बातें हुई टीबी के विषय में, ये सारी बातें हम आपको एक एक करके सुनाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये विशेष कार्यक्रम स्मार्ट के सौजन्य से सुनो शादन 90.8 FM पर लगातार हम प्रचार प्रसारित कर रहे हैं। तो कहने का आशय यही है कि टीबी मुक्त भारत हमें बनाना है, टीबी से हमें अपने आप को बचाना है। 2025 तक टीबी हारेगा देश जीतेगा, इस मुहिम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसी संबंध में अब आइए सुनते हैं न्यूट्रिशन जन भागीदारी निक्षय मित्र के बारे में क्या कहते हैं हमारे अतिथि डॉक्टर गिरीश, CDC ज्वाइंट डायरेक्टर।
1: मैं आप सभी लोगों को बताने में हर्ष होता है कि हमारे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत 9 सितंबर को हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने की थी। ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हम जो टीबी मरीज है, टीबी मरीज की जो ट्रीटमेंट चलती है, ट्रीटमेंट में न्यूट्रिशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब जो पेशेंट जिसकी ट्रीटमेंट चल रही है उसका न्यूट्रिशन यानी उसका पोषण सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अगर पोषण सही तरीके से ड्यूरिंग ट्रीटमेंट होता है तो पेशेंट का जो आउटकम है, आउटकम बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा इस उद्देश्य का है कि जन भागीदारी। देखिए, भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं पेशेंट के लिए और या कॉमन नागरिकों के लिए होती है, बट हमारा उद्देश्य ये है कि हम जन भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं। तो ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जिसके तहत कोई भी NGO, कॉरपोरेट या फिर स्वयंसेवी संगठन या फिर कोई व्यक्ति या कोई रिलीजियस पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी स्वयं आगे आके अपने आप को निक्षय मित्र बना सकते हैं। और कोई जो टीबी पेशेंट जिनकी अभी फिलहाल ट्रीटमेंट चल रही है उनको गोद ले सकते हैं। तो इसी तरह से एक बॉन्डिंग हो जाएगा जिसके द्वारा जो टीबी पेशेंट है उन्हें न्यूट्रिशन मिलेगा। दूसरी बात, जो निक्षय मित्र है वो हम अपनी सामाजिक दायित्व है वो दायित्व का निभायन करेंगे। और इसी तरह से जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2025 को टीबी को इलिमिनेट करना है, उसके तरफ बढ़ने के लिए एक कदम है। और हमें गर्व के साथ ये कहने में ये आता है कि करीबन 13 लाख टीबी पेशेंट में से 10 लाख टीबी पेशेंट ने न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए उन्होंने कंसेंट दिया है। और ये 10 लाख पेशेंट्स में से नियर अबाउट 10 लाख पेशेंट चिन्हित हो चुके हैं और करीब 50,000 के ऊपर डिफरेंट निक्षय मित्र जो विभिन्न समाज के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न PSU से या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से या पॉलिटिकल पार्टी से, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से आए, उन्होंने आगे बढ़ के निक्षय मित्र बने और हमारे टीबी पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए ही है। धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गिरीश, CDS ज्वाइंट डायरेक्टर को, जो की बातें कर रहे थे टीबी के विषय में, न्यूट्रिशन के बारे में, जन भागीदारी के बारे में और निक्षय मित्र के बारे में। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि अगर आपको 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, सांस लेने में तकलीफ है या शाम को बुखार आ रहा है, वजन घट रहा है या किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी का आप सामना कर रहे हैं तो तुरंत टीबी की जांच जरूर कराएं ताकि वक्त रहते हुए उसका इलाज संभव हो पाए। और खास बात यह भी सामने आती है कि टीबी का आधा अधूरा इलाज हमें नहीं छोड़ना है, टीबी का इलाज संभव है। टीबी हारेगा देश जीतेगा। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। यहाँ पर एक छोटा सा मधुर गीत संगीत सुनते हैं और उसके बाद हम आपको मिलते हैं, कहीं जाएगा मत। यह है ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है। इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो विषय है टीबी। टीबी मुक्त भारत हमें बनाना है। प्रधानमंत्री की सोच यही है कि 2025 तक टीबी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। कहते हैं ना कि आप चलेंगे मैं चलूंगा और कदम से कदम मिलाकर जब हम चलेंगे तो निश्चित तौर पर टीबी को हम हरा पाएंगे। हमें लापरवाही नहीं बरतनी है, वक्त रहते हुए अपना इलाज करवाना है। और इस प्रोग्राम की जो खास आकर्षण है वो है डॉक्टर दीपा मलिक, जो कि टीबी की एम्बेसडर भी हैं और पहली वो महिलाएं पैरालंपिक में जिन्होंने मेडल हासिल किया है। इनके बारे में हम सुनेंगे जरूर, मगर आखिर में हम इनको आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ रही हैं अनिशा जी, जो कि ACSM NTSU से हैं। तो आइए सुनते हैं उनका परिचय और सुनते हैं ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर दीपा मलिक जी के बारे में कि किस तरीके से इन्होंने प्रयास किया और किस तरीके से वो इस सोशल कॉज से वो जुड़ी। तो आइए सुनते हैं अनिशा जी को।
1: टीबी का प्रोग्राम चल रहा है, उसको हम नेशनल लेवल पे स्टेट लेवल पे सपोर्ट करते हैं ताकि जैसे किरी सर ने बोला कि जो हमें टीबी का जन आंदोलन चलाना है उसके तहत हम सपोर्ट टीबी प्रोग्राम के साथ काम करते हैं। मैडम की जो खेल में उपलब्धियां हैं वो तो सबने बताई, हम सबको पता भी है, खेल रत्न अवार्डी, पद्मश्री अवार्डी, अर्जुन अवार्डी, और मैडम प्रेसिडेंट भी हैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की, तो ये सारी तो मैडम की जो उपलब्धियां हैं हम सबको पता है। बट मैं मैडम एक आई जस्ट वॉन्ट टू गो अ लिटिल पर्सनल एंड शेयर यू नो हाउ मैम गॉट एसोसिएटेड विद दिस प्रोग्राम, मैम इस प्रोग्राम के साथ कैसे जुड़ी और उनकी क्या अपेक्षा रहेगी इस प्रोग्राम को लेकर आगे चलकर और उनका किस तरह से वो जुड़ना चाहती हैं इस प्रोग्राम में। तो मैडम का जब हमने मैडम को अप्रोच किया कि आप हमारी ब्रांड एम्बेसडर बने, क्योंकि जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स बनते हैं उनके एसोसिएशन और उनके प्रोग्राम ज्वाइन करने से जो विजिबिलिटी मिलती है या जो किसी प्रोग्राम को के बारे में लोगों तक प्रचार होता है वो एक उल्लेखनीय और अलग तरीके का ही होता है। तो मैडम आई थिंक व्हाट वाज वेरी इनकरेजिंग एंड हार्टनिंग फॉर अस इज दैट मैम डिड नॉट टेक यू नो आई थिंक शी जस्ट अग्रीड इन विद अ ब्लिंक ऑफ एन आई बिकॉज टू हर द टीबी प्रोग्राम और टीबी एलिमिनेशन फ्रॉम द कंट्री इज वेरी वेरी पर्सनल, वेरी वेरी क्लोज टू हर हार्ट। सो शी हर थॉट वाज की जो ये हमारा प्रोग्राम है ये इंक्लूसिव होना चाहिए, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। तो शी सॉर्ट ऑफ नॉट ओनली सेड यस आई विल सपोर्ट हर सपोर्ट द प्रोग्राम बट शी सेड व्हाट एल्स कैन आई डू टू मेक श्योर दैट दिस प्रोग्राम गोज फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। सो मैडम जो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो हम आपके बहुत वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू कि आपने आप इस प्रोग्राम में एक सर्सरी फॉर्मल यू नो जस्ट फॉर द सेक ऑफ ज्वाइनिंग नहीं जुड़ी है, आप इसमें आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट है। और जब मैम ने निक्षय मित्र बनने का ठाना और उन्होंने कहा कि वह 5 पर्सन विद टीबीज को न्यूट्रिशन सपोर्ट देना चाहेंगी तो मैम का एक ये शर्त थी कि वो उनको पर्सनली देना चाहेंगी, वो उनको पर्सनली उनसे इंटरैक्ट करना चाहेंगी और उनका प्रोग्रेस पर्सनली मॉनिटर करना चाहेंगी। तो दिस टॉक्स अबाउट मैडम्स कमिटमेंट यू नो टू द प्रोग्राम। तो मैं सिर्फ यही 2-3 चीजें मैडम की ये जो उनके साथ टीबी प्रोग्राम के साथ जुड़ाव है उसके बारे में बताना चाह रही थी। और इसके साथ ही थैंक यू वंस अगेन मैम फॉर बीइंग एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एंड होपफुली एज वी गो फॉरवर्ड वी विल कंटिन्यू टू हैव मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज टू बी एंगेज्ड विद यू। सो जो भी यहाँ पे मौजूद हैं हमारे कम्युनिटी के लोग, हमारे मीडिया के दोस्त, हमारे सब अफसरान और ऑफ कोर्स मैडम और उनकी टीम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड वी होप दैट दिस इज एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी फॉर ऑल ऑफ अस ऑल्सो टू कीप अडॉप्टिंग पर्संस विद टीबी एंड कीप सपोर्टिंग देम ताकि उनको जो भी टीबी से जूझ रहे हैं वो एज इट इज एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको ये लगना चाहिए कि उनके साथ कदम कदम किसे कदम मिला के खड़े होने के लिए कोई खड़ा है, अपना एक अकेले इंडिविजुअल लोनली जर्नी नहीं है। दैट इज वाई वी आर ओपनिंग दीज कॉन्वर्सेशन ऑन टीबी एंड पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड टू सपोर्ट। तो गिरी सर ने बहुत अच्छे से सारे नंबर्स आपको बताए, विच शोज द मोमेंटम दैट इज पिक्ड अप. सो थैंक यू वेरी मच.
0: तो अभी आप सुन रहे थे अनीशा जी को, खुद के बारे में उन्होंने अपना परिचय दिया और बातें की डॉक्टर दीपा मलिक जी के बारे में, कि किस तरीके से उनका इस टीबी के सामाजिक कार्यक्रम से जुड़ना हुआ टीबी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में. फिलहाल वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद जिनका आप इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर दीपा मलिक को सुनने का, वो बातें क्या हुई वो हम आप तक पहुंचाएंगे मगर एक छोटे से अंतराल के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुरशादा 90.8 FM.

0: फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ स्मार्ट के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं, द टीबी चैलेंज, टीबी हारेगा देश जीतेगा। इसी संबंध में हमने एक विशेष कार्यक्रम को कवर किया भारत सरकार के सहयोग से, उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को। ये कार्यक्रम हुआ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेक्टर 39 से नोएडा उत्तर प्रदेश में, और इसी संबंध में हमने बातें की पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन अवार्डी, इंडिया फर्स्ट वुमन पैरालंपिक मेडलिस्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया डॉक्टर दीपा मलिक, जो कि टीबी की ब्रांड एम्बेसडर हैं। इन्होंने क्या क्या कहा टीबी के विषय में, क्या कहा उन्होंने डाइट के विषय में, किस तरीके से उन्होंने हर एक समस्या पर खुलकर बातें की, किस तरीके से उन्होंने अवेयरनेस के बारे में बातें की। वो खुद कहती हैं कि कदम मेरे नहीं हैं, लेकिन मैं कदम से कदम मिलाकर चल रही हूं, जब मैं सहयोग कर सकती हूं तो आप क्यों नहीं। क्या कहा आइए सुनते हैं डॉक्टर दीपा मलिक जी को।
1: बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सभी का, इतना सम्मान और प्यार और अपनापन देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। मैडम ने कहा कि मेरा पर्सनल एक जुड़ाव है इस निक्षय मित्र बनने के पीछे। मैं खुद भी 8 महीने ATT मुझे दिया गया बचपन में, जब मेरा पहला ट्यूमर हुआ था तब मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं हुई थी, इतनी तकनीकी, इतना वैज्ञानिक उन्नति नहीं हुई थी। तो जो ट्यूमर में पीला पदार्थ निकला या जो सूजन निकली रीढ़ की हड्डी में, उसके लिए फिर मुझे 8 महीने ATT का ट्रीटमेंट दिया गया। वो बात अलग है कि ट्यूमर्स मेरे दोबारा आए, किसी और कारण से आए, लेकिन उस वक्त मुझे पता था कि समय समय देखकर लगातार बिना भूले, बिना उसको रोके, बिना किसी अड़चन के वो दवाई मेरे को माँ बाप की अक्सर दिनचर्या में वो समा चुका था कि ये दवाई देनी है, इसमें ब्रेक नहीं देना है। एक तो पर्सनल किस्सा मैं वो सुनाऊं, लेकिन एक बहुत बड़ा धन्यवाद मैं आपको इस मंच से देना चाहूंगी, और एक बहुत हैरान करने देने वाला एक इंसिडेंट हुआ मेरा जब मैं निक्षय मित्र से जुड़ी, और मैं खुद हैरान हूं कि ये हुआ क्या और हुआ कैसे और हुआ क्यों। शायद ईश्वर खुद चाह रहा था कि मैं इस प्रोग्राम से जुड़ूं, और मैं खुद भी सच में मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैं आज भी सुबह जब उठी तो मैं एक बार ईश्वर का धन्यवाद करके उठी कि शुक्र है कि हम इस प्रोग्राम से जुड़े, क्योंकि जो बच्चा मेरी सेवा करता है, जो मेरे साथ जुड़ा है, रोशन यहीं पे खड़ा है, अभी भी वीडियो बना रहा है, वो एक तरह से मैं यूं कहूँ कि मैं इस व्हील चेयर पे हूँ तो वो मेरी व्हील चेयर का सारथी है, वो मेरी गाड़ी भी चलाता है, वो मेरी व्हील चेयर भी चलाता है, जिसकी मदद के बिना शायद मैं इतनी आसानी से आ जा ना सकूं, क्योंकि मेरा छाती का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त है। और जब हम वहां पर इस टॉक को कर रहे थे, हम खुलकर इसके लक्षणों की बात कर रहे थे, हम टीबी की वार्तालाप कर रहे थे, हम भिन्न भिन्न प्रकार के ट्यूबरक्लोसिस पे चर्चा कर रहे थे, और वो कुदरती उस चर्चा का हिस्सा था क्योंकि वो मेरे साथ वहां आया था। और जब तक वो पूरा फंक्शन खत्म हुआ और हम गाड़ी में बैठे, और गाड़ी में बैठते ही उसने कहा कि मैडम मुझे लगता है कि मेरी माँ को भी शायद ऐसी कोई शिकायत है। और उसी वक्त मैं सब डॉक्टर साहब से मिलकर आई थी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, सबने इंस्टेंट रिएक्शन दिया, और आगरा में उनकी माता जी रहती हैं और हाथों हाथ उनका इलाज हुआ, और देखिए उनको भी ट्यूबरक्लोसिस ही निकला और उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, जो कि 6-7 महीनों से नकारा जा रहा था। तो ये अपने आप में एक उदाहरण है, ये तो मेरे घर की चर्चा है, मेरे घर से जुड़े व्यक्ति की चर्चा है, मेरी अपनी चर्चा है, मेरी अपनी निजी जिंदगी का एक एक्सपीरियंस है कि जब हम इसकी अवेयरनेस की बात करते हैं उसका रिजल्ट अपने आप एकदम से आगे आता है। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इस अवेयरनेस का हिस्सा बनाया। निक्षय मित्र तो मैं बनी, लेकिन मैं कहती हूँ ना कि आपके जुड़ने से अगर एक जीवन भी बदलता है, जो कि ऑटोमेटिकली बदला, रोशन की माँ का इलाज शुरू हुआ, तो यही कारण है कि हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हम ऐसी जो कैंपेन्स हैं हम चला रहे हैं और उनका असर हाथों हाथ नजर आ रहा है। बहुत एहसानमंद कहूंगी क्योंकि अब मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं, तो मैं अपना एहसान व्यक्त करूंगी, अपना शुक्रिया व्यक्त करूंगी। हजार निक्षय मित्र, हजार लोगों के आप बने, ये बहुत अपने आप में प्रेरणादायक है। मलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूट्रिशन की बात करें तो मैं खिलाड़ी हूँ और मुझसे ज़्यादा अच्छे खाने के बारे में, उसके असर के बारे में, मैं 23 साल से लकवाग्रस्त शरीर को भी मेंटेन कर रही हूँ। मैं ट्यूमर की शिकायतों का प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ और साथ ही मैं खिलाड़ी भी हूँ, तो मैं एक अच्छे भोजन की, अच्छे न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि शरीर को, इम्यूनिटी को बनाने के लिए हमें अच्छा भोजन, अच्छा नरिशमेंट लेना है, ताकि हम अच्छे ढंग से जो दवाइयाँ हमारे शरीर में जा रही हैं उन्हें हम अपने शरीर के फायदे के लिए एब्जॉर्ब कर सकें। और एक अच्छी बात है, हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में निक्षय मित्र और ऐसे अच्छे कार्य तो कर ही रहे हैं, और जहाँ पे पोषण और पौष्टिक आहार की हम बात कर रहे हैं, तो 2023 मोदी जी के आह्वान पर ईयर ऑफ द मिलेट, मोटे अनाज का ईयर यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है। तो वही हमारा खान पान, हमारा अनाज, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी पुरानी खाने पीने की, खाना बनाने की पाक विधियां जो हैं, वो वापस केवल हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे संसार में अब दोबारा उनका जागरण हो रहा है, दोबारा उनका प्रयोग होने जा रहा है। तो बड़े गर्व की बात है कि हम उस भारत से हैं जो अपनी हर कठिनाई को, अपनी हर जितनी भी दुविधा है, जैसे हमने पोलियो से जीत हासिल करी, अब हम टीबी मुक्त भारत की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं। और उस कदम में मैं गर्व से कहती हूँ कि मेरे कदम चलते नहीं हैं, मैं चल नहीं पाती अपनी टांगों से, लेकिन टीबी मुक्त भारत के कैंपेन में कदम से कदम मिलाकर अपना योगदान मैं दे रही हूँ। तो अगर मैं दे सकती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे इस आह्वान से सभी आगे आएंगे, सभी जुड़ेंगे, सभी एक स्वस्थ भारत, एक फिट इंडिया की ओर अपना कदम रखेंगे, पौष्टिकता की ओर अपना ध्यान बढ़ाएंगे। 2023 में हम जी तोड़ के मेहनत करेंगे कि हम टीबी मुक्त भी हों और हम अपने मोटे अनाज, जिसे कहते हैं ईयर ऑफ द मिलेट, को बड़े पौष्टिक रूप से हम अपनी दादी, अपनी नानी की बनाई हुई खाने की विधियां हैं उनको दोबारा पुनः अपने खाने में इस्तेमाल करेंगे, और अच्छा हृष्ट पुष्ट और मुस्कान स्वास्थ्य, ठीक उसी तरह अपना हास्य अपने अंदर, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप, एक अंग्रेजी की कहावत है, यू शुड बी एबल टू लाफ अवे योर ट्रबल्स, हंसते हंसते अपनी मुश्किलों को आप पार करना, ये अगर आपके आचरण में आ जाएगा तो आप बहुत सकारात्मक सोच के साथ अच्छे हो जाएंगे। टीबी की दवाइयाँ बहुत बेहतर हो चुकी हैं, बहुत आधुनिक हो चुकी हैं, इसमें वैज्ञानिक तरक्की हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि ये ला इलाज है। तो जो इलाज है लंबा है, हौसला रखना है, खुश रहना है, पौष्टिक आहार खाना है, एक दूसरे से इसकी बातचीत करनी है, और जो प्रिकॉशन है जैसे कि मास्क लगाना है तो ज़रूर अपना मास्क लगाइए पब्लिक स्पेसेस में, अपनी सेहत को भी संभालिए और दूसरों की सेहत का भी ध्यान रखिए, ताकि टीबी फैले ना। जब तक टीबी कंट्रोल नहीं आती, पूरी एहतियात बरतें, मास्क लगाएं और दवाई खाना नहीं भूलना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।
0: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर दीपा मलिक को, जो कि भारत की पहली महिला मेडलिस्ट हैं पैरालंपिक में, और पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड और न जाने कितने अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। वो कहती हैं कि 23 साल से मैं लकवाग्रस्त हूं, लेकिन मेरी सोच उम्दा है, मेरा कार्य करने का जो जज्बा है वो आज भी जिंदा है। जब मैं अपने कदमों से नहीं चल सकती, लेकिन मैं जमाने के साथ, सरकार के साथ, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हूं, जब मैं सहयोग कर सकती हूं तो आप क्यों नहीं। सिर्फ आपको टीबी पर फतह पानी है, तभी स्वस्थ इंडिया होगा, तभी फिट इंडिया होगा। पौष्टिक आहार का ख्याल रखना है, मास्क लगाना है, दवाई समय पर लेना न भूले। बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाई डॉक्टर दीपा मलिक ने। मैं आशा करता हूं ये विशेष कार्यक्रम आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बताएगा जरूर कि ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा। साभार आभार व्यक्त करते हैं स्मार्ट का, भारत सरकार का, जिसकी वजह से ये कार्यक्रम हम कवर कर पाए। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मुझे यानी गगन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: लेकिन दोस्त अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहां खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।
1: हाय दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा
2: 90.8 एफएम। सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीबी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीबी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।
3: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, किसे दिखाऊं, पता नहीं कितना पैसा खर्च हुई है।
1: अरे मैं तो कहूँ हूँ कि तुम इसे लेकर बाबा जी के पास जाओ, बच्चों को अक्सर नजर लग जाती है, अरे नजर झड़वाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।
2: अभी कहीं ले जाने में जाने की जरूरत नहीं है, जाके मेडिकल स्टोर से दवा ले लो या गांव के बंगाली डॉक्टर को दिखा लो, दोनों ही बहुत जानकार हैं। बड़े अस्पताल में बस बड़ा पैसा खर्च होता है और कुछ नहीं।
3: चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बच्चे को जिला में स्थित बीमार नवजात शिशुओं के लिए अलग से बने अस्पताल जिसको कि SNCO बोलते हैं, वहाँ लेके चल सकते हैं। वहाँ के डॉक्टर साहब और नर्स बहन जी बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल में विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। शहर के बड़े अस्पतालों जैसी सब मशीनें इस अस्पताल में हैं। अगर बच्चे की कोई जांच करानी हो तो अस्पताल द्वारा खुद ही करा ली जाती है। नवजात को लेकर इधर उधर भागना नहीं पड़ता है और इन जांचों और दवाइयों पर परिवार को कोई भी खर्च भी नहीं करना पड़ता। इसके साथ बीमार शिशुओं को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर वापस छोड़ने के लिए सरकार ने निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा दी हुई है। तो सोचिए कि सरकार ने अगर इतनी व्यवस्था की है तो हम क्यों अपने नन्हे मुन्ने की जान को जोखिम में डालें और क्यों फालतू पैसा खर्च करें।
0: मैंने सोच लिया है, अब अपने बच्चे को 102 एम्बुलेंस में ले जाकर SNCO में ही दिखाऊंगा।
3: तो आपको क्या समझ में आया, फर्क पड़ता है अगर आप अपने बीमार नन्हे मुन्ने को झाड़ फूंक, मेडिकल स्टोर, झोला छाप डॉक्टर या फिर महंगे प्राइवेट डॉक्टर की बजाय जिला अस्पताल में स्थित SNCO में दिखाते हैं, क्योंकि फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: मैं तुमसे प्यार नहीं करती, कृपया आप रास्ता देंगे?
4: प्लीज।
3: थैंक यू।
5: वर्षा जी, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो।
3: तुम्हें कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब पता चलेगा बच्चू कौन हूँ मैं।
5: अली का शरारती है। वो तो ऐसे मजा करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब

0: के।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चले।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
5: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, आज का जो समय है वो इंटरनेट का जमाना है, इसलिए हमें दुनियादारी के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी हम समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे और अपनी खेती से अधिक मुनाफा ले पाएंगे। किसान मित्रों, भारत सरकार द्वारा भारत में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में अपने ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार करके नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराना है। किसान मित्रों, भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। किसी भी देश के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था की मजबूती आज के वक्त में प्राथमिक वाला मुद्दा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करके ही भारत विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को हासिल कर सकता है। डिजिटल इंडिया का समाज के हर क्षेत्र के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस अभियान का पूर्ण रूप से व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और इसने पूरे समाज की प्रगति में योगदान दिया है। इस पहल के तहत सरकार ने डिजिटल सुविधाएं प्रदान करने, डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने और डिजिटल सर्विसेज को पहुंचाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इससे नागरिकों को आसानी से विभिन्न सरकारी सेवाओं और जानकारी का उपयोग करने का मौका मिलता है। ये भारत को एक डिजिटल युग में आगे बढ़ने में मदद कर रहा है और साथ ही देश के विकास को गति दे रहा है। किसान मित्रों, डिजिटल इंडिया का महत्व आज की तकनीकी दुनिया में बढ़ता जा रहा है और हमारे देश के साथ ही हम सभी के लिए एक मजबूत भविष्य बना रहे हैं। डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जैसे कि जनधन योजना, आधार, डिजिटल रोजगार और डिजिटल एजुकेशन। इससे गांव और शहरों के लोग आसानी से सरकारी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, जो समृद्धि और सुविधा की दिशा में महत्वपूर्ण है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से भारत में डिजिटल शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे तकनीकी ज्ञान और कौशलों का संवर्धन हो रहा है। इससे देश का विकास और सामाजिक न्याय में सुधार हो रहा है। डिजिटल इंडिया भारत को ग्लोबल तकनीकी नागरिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है और देश के विकास को सुनिश्चित रूप से गति दे रहा है।

इसका महत्व आज की तकनीकी दुनिया में और भी बढ़ रहा है और हमारे देश के लिए एक सशक्त भविष्य बनाने में मदद कर रहा है। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही डिजिटल इंडिया की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं सुनील चौहान और उनके साथियों से ये रागनी।

0: किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान और उनके साथियों से ये रागनी। किसान मित्रों, कुछ साल पहले तक आप पुराने पारंपरिक तरीकों से खेती करते रहते थे। आपके पास इतने साधन और सुविधाएं नहीं थी कि आप खेती में नए प्रयोग कर पाएं या खेती में होने वाली समस्याओं से निपट पाएं। लेकिन पिछले कुछ समय में आप जिस तरह से डिजिटली सक्षम हुए हैं, उससे कृषि क्षेत्र का काफी विकास हुआ है। हाल ही में एक नया टर्म डिजिटल एग्रीकल्चर चलन में आया है। डिजिटल एग्रीकल्चर यानी फसलों की पैदावार बढ़ाने और खेती को सक्षम और लाभदायक बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों और सेवाओं का इस्तेमाल करना। हमारे किसान भाई अब खेती से जुड़ी अपनी समस्याओं से निपटने, नई कृषि विधियां सीखने और दुनिया भर में हो रहे कृषि प्रयोगों के बारे में जानने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे साधनों से जुड़ रहे हैं। खेती को बेहतर बनाने में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े ये प्लेटफॉर्म काफी काम आ रहे हैं। भारत में आज भी ज्यादातर खेती मौसम के हाल पर टिकी है, जिसमें ज्यादा जोखिम है। लेकिन किसान भाई, घर बैठे कृषि वैज्ञानिकों के बताए तरीकों से इन समस्याओं से निपट रहे हैं। पहले खेत में किसी फसल पर कोई रोग लग जाए तो बिना कृषि विशेषज्ञ को दिखाए उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती थी, और जब तक कृषि सलाहकार खेतों का मुआयना करने पहुंचते थे, तब तक उस फसल का समय ही बीत चुका होता था। और कई बार तो छोटी सी बीमारी भी जानकारी के अभाव में पूरी फसल के बर्बाद होने का कारण बन जाती थी। लेकिन अब किसान भाइयों की कोई भी समस्या हो, चुटकियों में हल हो जाती है। सोशल मीडिया ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। किसानों को खेती से जुड़ी कोई भी समस्या हो, वे व्हाट्सएप या फेसबुक पर बने ग्रुप में समस्या को बताकर उसका निदान पूछते हैं और फटाफट उसके जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं। इन समूह में कृषि वैज्ञानिक, कृषि सलाहकार, ये सब जुड़े रहते हैं। हमारे किसान भाई ज्यादातर जैविक खेती, फसल में लगने वाले रोग, जानवरों से फसलों को बचाने के तरीके, खेती में उत्पादन कैसे बढ़ाएं, प्रोसेसिंग, सरकार की किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और अनुदान जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो किसान भाइयों, आप सोशल मीडिया का जरूर आप लाभ उठाएं, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए सावधानी भी बरतनी चाहिए। कई बार हम ठगी का शिकार भी हो जाते हैं, तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। जब भी आप सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सतर्क होकर इस्तेमाल करें, ताकि आप किसी भी ठगी का शिकार ना हो पाए। तो किसान मित्रों, इन सब बातों का आप जरूर ध्यान रखेंगे। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं लोकेंद्र सिंह।
1: अरे प्यार

अभी आप सुन रहे थे लोकेंद्र सिंह से ये रागनी। किसान मित्रों, भारत सरकार आपके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए गोबर धन योजना चला रही है। इस योजना के तहत गांव में संयंत्र स्थापित किए जाएंगे और इस संयंत्र की स्थापना से गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट, बायोगैस और बायो सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा और इससे किसानों, खासकर हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। गोबर धन योजना के मुख्य रूप से दो उद्देश्य हैं, पहला गांव को स्वच्छ बनाना और दूसरा पशुओं और अन्य प्रकार के जैविक अपशिष्ट से अतिरिक्त आय और ऊर्जा उत्पन्न करना। इसका लक्ष्य उद्यमियों को जैविक खाद, बायोगैस और बायो सीएनजी उत्पादन के लिए गांव के क्लस्टर्स बनाकर इनमें पशुओं का गोबर और ठोस अपशिष्टों के एकत्रीकरण और संग्रहण को बढ़ावा देना है। किसान मित्रों, गोबरधन योजना को स्वच्छ भारत मिशन के तहत आरंभ किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन का प्रमुख लक्ष्य भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाने

के साथ ही शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र में स्वच्छता का प्रसार करना है। इन उद्देश्यों को गोबरधन योजना के साथ एकीकृत कर इस दिशा में प्रगति की जा सकती है। और किसान मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हमारे किसान भाइयों की आय पूरी तरह फसल की पैदावार पर निर्भर करती है, इसीलिए ये योजना किसानों की आय बढ़ाने में काफी हद तक कारगर होगी। सरकार ने इस योजना द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता देने के साथ साथ उनको आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना गोवर्धन योजना के बारे में, और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं ऋषिपाल खदाना और उनके साथियों से ये रागनी।

किसान मित्रों, इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान, जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामो निशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह, जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थायी होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे कि ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
2: तो फिर क्या था, सावित्री सोलह श्रृंगार करके और खान पीन का सामान रथ में धरवा के और सजीला रथ जुड़वा के दोस्तों चालन की तैयारी करती है, तो उसकी सखी सहेली चौकर से उसे घेर लेती है। भला कैसे सावित्री को कहती है, सावित्री इतना ख्याल करना कि वर ऐसा हो जो तेरी जोड़ी के काबिल हो।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: क्या आपको पता है गर्भवती महिला को प्रसव के लिए समय से अस्पताल ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है
2: और वो भी बिल्कुल निशुल्क। गर्भवती को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाने के लिए 102 नंबर पर फोन करके आप एम्बुलेंस सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
2: शिशु की सही देखभाल से
1: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 एफएम द्वारा जनहित में जारी।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। इसके अंतर्गत महिलाओं से जुड़ी हुई बातें हो रही हैं, उनके हक की बातें हो रही हैं और उन्हीं के संबंध में लगातार बातें हम यहां से आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी क्रम में हमें दूसरे स्टेशन का भी सहयोग मिल रहा है। आइए अब हम सुनते हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज सामुदायिक रेडियो स्टेशन हेवल वाणी द्वारा प्रस्तुत हिंसा को नो कार्यक्रम के अंतर्गत ये श्रृंखला।

0: सुशील जी, मैं कहीं पानी पूरी खाने नहीं गई थी। आप सुनते तो हो ही नहीं, बस बेमतलब अपनी ही बातें थोपते रहते हो। यही तो आप मर्दों की कमी है, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होते हो। पर होंगे भी कैसे, किसी ने सिखाया ही नहीं कि औरतों की भी सुननी चाहिए।
1: पर मैंने तो अभी पानी पूरी के अलावा कुछ बोला ही नहीं।
0: हाँ, तो आप पहले एक सवाल का जवाब खत्म होने दीजिए, उसके बाद ही आगे की बात होगी।
1: अच्छा भाई, अब बताएंगे भी? ये भी रेसे ही जलेबी की तरह बातें घुमाते रहेंगे। आगे का शो भी करना है भाई।
0: हाँ हाँ, बता रही हूँ। आज जब मैं सुबह स्टूडियो के लिए निकल रही थी, तो एक छोटी सी बच्ची अपनी मम्मी का हाथ पकड़े स्कूल जा रही थी।
1: तो इसमें बड़ी क्या बात है, जब छोटी लड़की है तो अपनी मम्मी का ही तो हाथ पकड़ेगी, किसी और का थोड़ी ना पकड़ सकती है।
0: हाँ, बड़ी बात नहीं है, पर उस लड़की की मम्मी उस मासूम सी बच्ची को पता है क्या कह रही थी कि बेटा, स्कूल में लड़कों से ज्यादा बात मत करना, स्कूल से सीधा घर आना, लड़कों की दोस्ती मत करना।
1: तो इसमें आपको अजीब क्या लगा पूजा जी, ये तो आम बात है।
0: आम बात? आपको ये आम बात लगती है सुशील?
1: पूजा जी, आम बात ही तो है। क्यों, जब आपने स्कूल जाना शुरू किया तो क्या आपकी माँ ने आपको ये सब नहीं समझाया?
0: हाँ सुशील जी, मेरी माँ ही नहीं बल्कि हर एक माँ अपनी बेटी को यही समझाती रहती है कि स्कूल में कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या करना है क्या नहीं। अक्सर यही बात एक लड़की को बचपन से ही सिखाई और समझाई जाती है।
1: बिल्कुल पूजा जी, आज हम कितनी भी बातें कर ले कि महिला समान है, पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं, लेकिन फिर भी आज हम लड़कियों में शर्म और झिझक देखना चाहते हैं, उसे जिंदगी में खुलकर जीने का हक नहीं देना चाहते हैं।
0: बिल्कुल श्रोताओं, अक्सर बेटियों को बचपन से ही तरह तरह की बातें, आदतें, बात व्यवहार आदि कई कुछ सिखाया जाता है, जो आगे चलकर उनके साथ होने वाली हिंसा का एक बड़ा कारण बनता है, भले ही हम उस कारण को देख नहीं पाते।
1: बाकी बातें तो आपकी ठीक है पूजा जी, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि ऐसा क्या कारण है जो हमें नजर नहीं आ पाता।
0: सुशील जी, वो कारण हमारे जन्म से ही शुरू हो जाता है। लड़की का जन्म भी नहीं होता, उससे पहले ही परिवार और बाकी लोगों के मन में ये ख्याल आने लगता है कि पहली बार में लड़का हो जाए तो कितना अच्छा होता है, सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं।
1: ओह, अब मैं समझा। श्रोताओं, आज हम कितने भी एडवांस हो जाएं, समानता की कितनी ही बड़ी बड़ी बातें क्यों न कर लें, लेकिन जब अपने घर की बात आती है तो आज भी हमारे समाज में लोग लड़के को ही प्राथमिकता देने लगते हैं।
0: बिल्कुल, इसमें किसी एक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इसका कारण हमारा समाज सदियों से ही लड़की को पुरुष की तुलना में नीचे का दर्जा देता है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी ये सोच आगे बढ़ती गई और महिला को पीछे खींचती चली गई।
1: दोस्तों, कहते हैं बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है, और एक परिवार पर ही बच्चे की सोच, उसका व्यवहार, उसकी आदतें सब निर्भर करता है।
0: पर परिवार में बच्चों को किस तरह का माहौल दिया जाता है, क्या ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हर किसी के मन में लड़का लड़की के बीच में असमानता की भावना आती है,
1: ये सब हम जानेंगे इस नाटिका से। तो आइए पहले सुनते हैं एक छोटी सी नाटिका।

0: अरे पिंकी, पिंकी कहाँ रह गई ये लड़की? पिंकी
1: जी दादी, आपने बुलाया?
0: हाँ बेटा, जा वो जरा ग्लास धुल दे, जा उन्हें धुल के लेके आ, जा बेटा।
1: दादी मेरे स्कूल का काम बाकी है अभी करने को, तो मैं काम खत्म करके धुल लूंगी ना।
0: अरे पहले बर्तन धुल देना बेटा, तब आराम से काम कर लेना, कोई अचानक आ जाएगा तो चाय पानी पूछने के लिए बर्तन भी तो होने चाहिए ना। जा बेटा जा बर्तन धुल दे, जा।
1: पर दादी।
0: जा बेटा धुल दे, तब कर लेना काम, जा फटाफट।
2: दादी चाय बनी है क्या?
0: नहीं बेटा, बनी तो नहीं है, पर तू बोल मैं अभी बना दूंगी।
2: रहने दो, मुझे लेट हो रहा है।
0: अरे चाय बनाने में भला कितना टाइम लगता है, अभी बन जाएगी। तू रुक, तू यहीं पे रुक, दो मिनट रुक बस।
2: नहीं दादी, मेरे सारे दोस्त खेलने चले गए हैं, मैं आके पी लूंगा।
0: थोड़ा पहले भी बोल देता बेटा, तो अब तक तो बन चुकी होती है। चल रुक, तू अब भी बनाती हूँ मैं।
1: कहाँ से बोलता, थोड़ी पहले उसका टीवी सोना रह जाता।
0: छोड़ तो उसे, वो तो बचपन से ही ऐसा है, तू जाके पहले बर्तन धुल, जा।
1: पर मेरे स्कूल का काम।
0: बोला ना, पहले बर्तन धुल उसके बाद बाकी काम, जा।
1: दादी
0: पिंकी, अरे पिंकी तूने अपनी माँ को भी देखा? बड़ी देर हो गई, अब तक घर नहीं लौटी है।
1: आ जाएगी दादी, तुम चिंता मत करो।
0: अरे कैसे चिंता ना करूँ, अकेली होती तो कोई बात नहीं थी, पर उसके साथ तो एक नन्ही जान भी है।
1: लो आ गई माँ। अरे क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत ठीक तो है ना?

0: हाँ बस थोड़ी सी चक्कर से आ रहे थे, कमजोरी सी महसूस हो रही।
1: कमजोरी तो होगी ही ना ऐसे में, खाना खाती तो कोई बात होती है, खाना तो खाती नहीं है।
2: दादी माँ को चक्कर खाना खाने से नहीं बल्कि इतनी तेज धूप में काम करने से आए हैं।
1: अरे हाँ तेज धूप, कहाँ है तेज धूप, तो बढ़िया ही सयानी बुढ़िया, हमने नहीं किया क्या कोई काम, हम तो 8वें महीने तक खेती और घर का पूरा काम करते थे।
2: अच्छा दादी अब काम तो पूरा हो गया, अब मैं स्कूल का काम कर लूँ क्या?
1: हाँ कर ले जाके, और सुन अपनी माँ को जरा गर्म पानी देते जाना।
2: दादी भैया को बोलो ना, वो तो आराम से खेलने निकल गया, उसे तो आपने कुछ भी नहीं बोला।
1: अरे वो बड़ी जल्दी में था।
2: दादी मुझे भी तो खेलने जाना था ना, मैं कब जाऊंगी?
3: अब तो थोड़ी देर में रात होने वाली है, अब जाकर क्या करेगी, फिर तो बोलेगी कि खाना लेट में बन रहा है, छोड़ अब जाने दे।
1: अरे सरला बहू ये ले दूध पी ले।
3: नहीं माँ जी मेरा मन नहीं हो रहा।
1: अरे पी ले बहू, तभी तो तू भी तंदुरुस्त रहेगी और मेरा पोता भी।
2: पर दादी आपको कैसे पता कि पोता ही होगा, पोती भी तो हो सकती है।
1: चुप कर, कैसी अपशगुनी बातें कर रही है, इस बार पोता ही होगा, मैंने तो 1000 मिन्नतें मांगी है भगवान से।
3: माँ जी क्या फर्क पड़ता है पोता हो या पोती?
1: अरे घर में दो लड़के होने जरूरी हैं, आजकल किसी चीज का कोई भरोसा है भला, कब क्या हो जाए।
2: दादी आपके चाहने से थोड़ी होगा, पर जो भी हो मैं तो बहुत खुश हूँ, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि लड़की ही हो ताकि मेरी बहन मेरी सहेली बन सके।
4: बधाई हो लड़की हुई है।
1: क्या लड़की, हे भगवान करम बूटे मेरी बहू के, मैंने तो सोचा था लड़का होगा पर ये तो लड़की, हाय राम अब क्या होगा मेरी बहू का।
3: पिंकी अपनी बहन के लिए दूध बनाकर ले आ बेटा।
1: अरे पिंकी जा जरा बाजार से सब्जी लेके आ, घर में सब्जी तक नहीं है।
2: अरे आप लोग तो ना मेरी जान ही ले लो, बस मुझे अपने स्कूल के प्रोजेक्ट का काम करना है और आप लोग है कोई कहता है ये करो कोई कहता है वो करो।
1: अरे अभी तू ही तो है हमारी पोती, तुझे नहीं बोलेंगे तो किसे बोलेंगे, पड़ोसी की बेटी को।
2: पड़ोस की बेटी को क्यों दादी, आपका पोता भी तो है, वो भी तो इसी घर में रहता है, यही खाता है यही सोता है, फिर उसे भी तो कुछ बोल दिया करो।
1: चल चल बहुत बोलने लगी है, जा जाके काम भी कर ले कुछ।
5: पिंकी रोहित कहाँ हो तुम लोग?
4: अरे ये तो पापा की आवाज लग रही है। ये पापा आ गए। पापा मेरे लिए साइकिल लाए हो ना, और वीडियो गेम वो भी लाए हो ना?
5: हाँ हाँ सब लाए हूँ, पर पहले पानी तो पिला लो मेरे बच्चों।
2: लीजिए पापा।
5: हाँ तो सबसे पहले ये रहा रोहित का वीडियो गेम।
4: वाओ पापा आप दुनिया के बेस्ट पापा हो।
5: और ये रही पिंकी की चमचमाती फ्रॉक।
2: थैंक यू पापा।
6: नमस्ते भाई साहब।
5: अरे टीचर जी नमस्ते, आइए बैठिए, आज कैसे आना हुआ?
6: बस थोड़ा आपके बच्चों के बारे में बात करने आई हूँ।
5: अरे पिंकी रोहित देखो तुम्हारे टीचर आई है, इधर आओ बच्चों। अरे माँ कहाँ हो सब लोग, बाहर आओ जरा देखो कौन आया है।
1: अरे टीचर जी आप, नमस्ते।
6: नमस्ते नमस्ते।
1: अरे बहू जरा चाय नाश्ता तो लेके आ टीचर जी के लिए।
6: अरे नहीं आंटी जी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस आपके बच्चों के बारे में आपको बताने आई हूँ।
1: अरे टीचर जी हम तो पहले से ही जानते हैं, हमारा रोहित तो पूरे स्कूल में अव्वल ही होगा, और इस पिंकी ने तो कुछ नहीं किया ना।
6: नहीं नहीं आप समझे नहीं, रोहित नहीं बल्कि आपकी बेटी पिंकी ने हमारे स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल किया है, और रोहित की तो मार्कशीट आप ही देख लीजिए, पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं देता ये रोहित।
5: क्या रोहित तू पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, और ऊपर से तू ये वीडियो गेम साइकिल और ना जाने क्या क्या मंगवाता रहता है, और पिंकी को देख ले कभी कोई डिमांड नहीं करती, घर के इतने सारे काम भी करती है फिर भी पूरे स्कूल में सबसे आगे है।
1: टीचर जी आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, हमारा रोहित तो दिन भर पढ़ाई करता रहता है, वो भी बंद कमरे में ताकि बेचारे को कोई परेशान ना कर सके।
6: नहीं आंटी जी मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, क्या आपने कभी रोहित को अपनी आंखों से पढ़ते हुए देखा है? नहीं ना, तो आपको कैसे पता कि रोहित बंद कमरे में पढ़ाई ही करता होगा, क्योंकि क्लास में तो ये बहुत शैतानी करता है और घर में पढ़ाई, ऐसा कैसे हो सकता है।
1: अरे
5: माँ बस करो, तुम अपने पोते की कितनी तरफदारी करोगी, ये देखो रोहित के खिलौने, बैट, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, वीडियो गेम, साइकिल, जो मांगा वो दिया। इसलिए नहीं कि पढ़ाई पर ध्यान न दे। और पिंकी, उसके पास तो केवल काम और एक छोटी सी गुड़िया और उसकी किताबें होती है। न उसने कभी कुछ मांगा और ना ही कभी हमने जरूरत महसूस की।
1: अरे पिंकी को क्या जरूरत किसी खिलौने की, उसके पास उसकी बहन है तो खिलौना ही तो है। वो भी छोटी बहन को बड़ी बहन नहीं खिलाएगी तो कौन खिलाएगा।
6: यही तो हम सोचते हैं आंटी जी कि लड़कियों को केवल गुड़िया से ही खेलना चाहिए। उछल कूद के खेल लड़कियों के लिए कहाँ होते हैं, उन पर तो केवल लड़कों का हक होता है। और इसी तरह के छोटे छोटे भेदभाव आगे चलकर बाद में घरेलू हिंसा जैसी बड़ी घटनाओं के कारण बनते हैं। हम अपने घर से ही लड़कों को खुली आजादी देते हैं जिससे वो जिद्दी हो जाते हैं और लड़कियों की इज्जत नहीं करते, और फिर लड़कियां भी इसे अपनी किस्मत समझकर बस सब कुछ झेलती जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये नाटिका? हमें उम्मीद है कि कार्यक्रम के इस छोटे से भाग से आपको समझ जरूर आया होगा कि हम केवल बातों में ही महिला को समानता का अधिकार देते हैं, पर असल में हम बचपन से ही उनके मन में ये बात कूट कूट कर भर देते हैं कि वो लड़की है, उसे लड़कों से अलग रहना है। उसके खेल खिलौने, उसकी आदतों, उसके व्यवहार, उसकी समझ, उसके काम आदि सबको लड़कों से अलग कर देते हैं। कोई कहे ना कहे, एक लड़की को खुद ही लड़कों से दबकर रहने की आदत बन जाती।
5: बिल्कुल पूजा जी, और बचपन का यही भेदभाव आगे चलकर जन्म देता है हिंसा को। हिंसा जो हमारे घरों में महिलाओं के साथ होती आई है और आज भी होती है।
6: बस केवल आज हिंसा का स्वरूप बदल गया है। आज खुलेआम मारपीट की जगह बंद कमरे में मारपीट होती है। आज लड़का लड़की दोनों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है, पर पढ़ाई के अलावा लड़कियों पर और घरेलू क्या क्या जिम्मेदारियाँ डाल दी जाती है।
5: हाँ, भले ही हम उन्हें जिम्मेदारियाँ न मानकर उसी लड़की के आने वाले जीवन की सीख कहकर सिखाते चले आते हैं, जिसे बिना रोक टोक के सिखा भी दिया जाता है और लड़की उसे आसानी से मान भी लेती है।
6: श्रोताओं, आप सोच रहे होंगे ऐसा भी क्या सिखाया जाता है लड़की को जो नहीं होना चाहिए। मैं समझाती हूँ। दोस्तों, बचपन से ही हम लड़कियों के लिए खिलौनों से लेकर हर चीज में भेदभाव करते आ रहे हैं, जबकि किसी ने नहीं कहा हमें ये भेदभाव करने को, पर फिर भी हम करते हैं।
5: हाँ बिल्कुल, सोचिए क्या किसी ने कहा कभी कि लड़की को गुड़िया ही चाहिए और लड़कों को फुटबॉल? कभी कहा किसी ने लड़कियों को परियों वाले कपड़े पहनने चाहिए और लड़कों को आर्मी जैसे?
6: दोस्तों, ये भी किसी ने नहीं कहा कि लड़की को रसोई का काम सिखाना है और लड़कों को अपने पैरों पर खड़ा रहना। तो हो गया ना परिवार में बचपन से ही भेदभाव का खेल शुरू।
5: हाँ पूजा जी, लड़की को अक्सर कहा जाता है कि वो पराया धन है, दूसरे घर जाकर अगर कुछ करेगी नहीं तो ससुराल वाले कहेंगे कि मायके वालों ने लड़की को कुछ नहीं सिखाया, और तरह तरह के ताने लड़की को सहने पड़ते हैं, और ये भी हिंसा का ही रूप है।
6: दोस्तों, हिंसा केवल मारपीटा ही नहीं होती, किसी को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप या अन्य तरह से आघात पहुंचाना भी हिंसा ही होती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पहले से ही लड़कियों को इस तरह की सीख दी गई है। यही हमारी परंपरा में भी है कि लड़कों को कमा कर लाना होता है और लड़की को घर संभालना होता है।
5: पर ऐसा नहीं है कि ये सब बदला नहीं जा सकता। यदि हम अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उन्हें सबसे पहले तो एक दूसरे की इज्जत करना सिखाना जरूरी है, जिससे महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को लगातार हवा मिलती रहती है।
6: बिल्कुल, और परिवार में होने वाले व्यवहार से ही लड़के और लड़की की समझ बनती है, जिससे लड़के को लगता है कि वो क्या कर सकता है और क्या उसके काम नहीं है, और लड़की को भी वही लगता है। जैसे लड़का रोटी नहीं बनाता, लड़की लेट तक घर से बाहर नहीं रहती, लड़का बर्तन नहीं धुलता, लड़की क्रिकेट नहीं खेलती, लड़कों को मजबूत बनना चाहिए ताकि कोई उन्हें हरा ना सके, लड़की तो कोमल होती है, लड़के लड़कियों की तरह रोते नहीं हैं, लड़कियों के बाल छोटे नहीं होते।
5: ये सही कहा पूजा जी आपने। हमारे समाज में लड़कियों के लिए चूल्हा चौका, घर के कामकाज और शरीफ बहू बनाने की तैयारी बचपन से ही शुरू हो जाती है, जबकि लड़कों को ये कभी नहीं सिखाया जाता है कि घर के कामकाजों में कैसे वो बराबरी का हिस्सेदार होता है।
6: अगर लड़के को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया जाता है तो लड़की को क्यों नहीं? अगर लड़की घर के कामों को करती है तो लड़का क्यों नहीं? अगर लड़कियों को परिवार संभालने की जिम्मेदारी समझाई जाती है तो लड़के को क्यों नहीं? ससुराल को अपना समझने की बात एक लड़की को कही जाती है, लेकिन लड़के को कभी नहीं कहा जाता कि अब दो घर आपके हैं।
5: बिल्कुल पूजा जी, अक्सर लड़कियों को कहा जाता है कि लड़की तो पराया धन होती है, पर एक लड़की के बिना परिवार भी नहीं बन पाता, ये भी सभी जानते हैं।
6: कहते हैं वंश आगे बढ़ाने में लड़की की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पर उसी लड़की को मायके में भी ये सुनने को मिलता है कि तू तो पराया धन है, जिस कारण उसके कई हक मार दिए जाते हैं, और ससुराल में भी यही ताने कि पराए घर से आई है और जिसमें एक लड़की के कई बार हक मार दिए जाते हैं।
7: लड़की शादी से पहले अपनी मायके को अपना समझती है और शादी के बाद अपने ससुराल को, लेकिन जब दोनों ओर से लड़की को पराये होने की बात कही जाती है तो एक लड़की किसे अपना असली घर समझे, ये सवाल हमेशा से ही उसके जहन में रहता है।
6: दोस्तों, एक लड़की सब कुछ करती है, सबको अपना समझती है, किसी भी परिवार की नींव होती है लड़की, एक वंश को आगे बढ़ाती है, लेकिन फिर भी उसे वो सम्मान ना ही मायके में मिल पाता है और ना ही ससुराल में।
7: दोस्तों, एक लड़की के बचपन से ही ये तय हो जाता है कि लड़की मजबूत बनेगी या कमजोर। हमारा समाज उसे आगे बढ़ाने की बजाय पीछे खींचने पर तुला रहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़की तो प्रायः धन है, उसे दूसरे घर जाना है।
6: श्रोताओं, एक लड़की के भी सपने होते हैं, वो भी आगे बढ़ना चाहती है और वो हर वो मुकाम हासिल कर सकती है जो कि एक लड़का करता है, बस हमें उसके साथ खड़ा होना होता है, उन्हें उन बंधनों से मुक्त करना है जो हमारे समाज में और हमारी रूढ़िवादी सोच ने उन पर लगाए हैं।
7: दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज महिला हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही है। बछेंद्री पाल, प्रतिभा पाटिल, वंदना कटारिया, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, लता मंगेशकर जैसी कई महिलाओं ने ये साबित कर दिया है, लेकिन फिर भी हम आज भी अपनी पुरानी और रूढ़िवादी सोच से महिलाओं को बांधने की कोशिश कर रहे हैं।
6: दोस्तों, आखिर हम कब समझेंगे कि जैसे गाड़ी को चलाने के लिए दोनों तरफ पहिए चाहिए होते हैं, ठीक वैसे ही जीवन की गाड़ी चलाने के लिए भी एक पुरुष के बराबर ही एक महिला की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
7: हाँ पूजा जी, ये सही उदाहरण दिया आपने। जैसे गाड़ी का एक भी पहिया ठीक से ना चले तो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है, ठीक वैसे ही जीवन की गाड़ी में अगर केवल पुरुष को ही महत्व मिलेगी, महिला को नहीं, तो ये जीवन भी डिसबैलेंस यानी कि असंतुलित हो जाएगा।
6: बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सभी को आज के कार्यक्रम से काफी कुछ समझ आया होगा और आप अपने घर में होने वाली छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर अपनी बेटियों के आगे आने वाली सारी बाधाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे।
7: तो दोस्तों, अब इस कार्यक्रम से इजाजत लेने का समय आ चुका है, पर अगले एपिसोड में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।
6: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे 90.4 मेगाहर्ट्ज सामुदायिक रेडियो स्टेशन हेवलवाणी द्वारा प्रस्तुत हिंसा को नो कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे सुनो शारदा 90.8 FM पर। ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा, 0120-4060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। सुनो शारदा 90.8 FM आप सबसे अपील करता है कि हम सबको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और हिंसा को नो कहना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
5: शारदा। एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
6: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
5: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
7: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
1: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
0: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
1: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
0: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
2: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
0: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
1: कल नहीं, अभी।
2: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आप।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये एक ऐसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्ची की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार
3: और आप सबको अजीत का भी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत उमंग कार्यक्रम में आप सबका। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी जी और कलावती सोनी जी ने।
3: आप लिखते हैं, आपके काम पर टीका टिप्पणी करने वाला इंसान ही असल में आपका अच्छा सलाहकार होता है
2: जी,
3: क्योंकि वो आपकी कमियां दूर करने में अहम भूमिका निभाता है
2: जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे

0: गुज्जर, आप सबने मिलकर लिखा है हमें। कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ताओं को सादर नमस्कार। मत बांटो इंसान को कविता सुनकर देशभक्ति की भावना जागृत हुई और हमारे ज्ञान में इजाफा हुआ।
1: और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए। आइए अब सुनते हैं ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी।
0: ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में आज हम जानेंगे महान लेखिका और सामाजिक कार्यकर्त्री हेलेन केलर के बारे में। उनका पूरा नाम था हेलेन एडम्स केलर।
1: उनका जन्म 27 जून 1880 को अमेरिका के अलाबामा में हुआ। जन्म के समय हेलेन केलर एकदम स्वस्थ थीं। जन्म के 19 महीनों के बाद वे किसी अज्ञात वायरल का शिकार हो गईं और उस बीमारी से उनकी दृष्टि, वाणी और सुनने की शक्ति जाती रही।
0: श्रोताओं, हेलेन केलर सामान्य बच्चों से भिन्न थी। हेलेन केलर के माता पिता के सामने एक चुनौती आ खड़ी हुई और वो चुनौती ये थी कि ऐसा कौन शिक्षक होगा जो उन्हें सच में शिक्षा दे सके। उन्हें आखिरकार एक शिक्षिका मिल गई जिनका नाम था मिस एनी सुलेवन।
1: उन्होंने हेलेन केलर को हर तरीके से शिक्षा दी, जिसमें उन्होंने स्पर्श वर्णमाला यानी मैनुअल अल्फाबेट और हेलेन केलर ने राइट हमसन स्कूल फॉर डेफ से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की।
0: श्रोताओ, इसके आगे स्नातक की पढ़ाई करने के लिए हेलेन केलर ने रेडक्लिफ कॉलेज में दाखिला लिया। हेलेन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में आती तो थी, लेकिन वह इतनी प्रतिभाशाली थी कि वह सामान्य बच्चों के साथ आसानी से पढ़ने लगी।
1: जी, यहाँ पढ़ते पढ़ते हेलेन केलर को लिखने का शौक हुआ और उन्होंने लिखना शुरू किया। हेलेन केलर ने अपने संघर्ष के इसी दौर में एक ऐसी पुस्तक लिखी जिसने उन्हें बहुत प्रसिद्धि और उपलब्धि दिलाई। इस पुस्तक का नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। श्रोताओं, ये पुस्तक अब तक दुनिया की 50 भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है और लाखों करोड़ों विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए बड़ी प्रेरणा का कारण है।
0: श्रोताओं, अपने जीवन में संघर्षों के ऐसे दौर को पार करके हेलेन केलर ने समझ लिया था कि जीवन में यदि संघर्ष किया जाए तो कोई ऐसा काम नहीं है जिसे हम ना कर सकते हो। उन्होंने पूरे विश्व का दौरा किया और सन 1959 में भारत भी आई।
1: श्रोताओं, हेलेन केलर ने अपने महान विचारों और जिंदगी के अनुभवों से ब्रेल लिपि में करीब 9 किताबें लिखी। वे सामान्य स्नातक थीं, लेकिन उनके लिखने की अद्भुत क्षमता के कारण उन्हें मानद डॉक्टरेट और मानद आचार्य की उपाधि प्रदान की गई।
0: श्रोताओं, हेलेन केलर ने अपने जीवन की मार्गदर्शिका एवं टीचर यानी एनी सलिवन की मदद से कई महान लेखक जैसे कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, अरस्तु, रविन्द्रनाथ टैगोर, नीत्शे और महात्मा गांधी आदि के साहित्य को पढ़ा, उनकी गहराइयों को समझा और कई किताबों का ब्रेल लिपि में अनुवाद भी किया।
1: जी।
0: दुनिया के दिव्यांगों और स्त्रियों के लिए वे एक बहुत बड़ी प्रेरणा हैं।
1: सन 1968 को दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया। उनके दो कथन बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके अनुसार, दुनिया की सबसे खूबसूरत और सुंदर चीजें न कभी देखी जा सकती हैं और न ही छुई जा सकती हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ दिल से महसूस की जा सकती हैं।
0: और श्रोता, उनका दूसरा कथन है, हम वह सब कुछ कर सकते हैं जिसे करने की हम इच्छा रखते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त सिर्फ ये है कि जो करें उसमें तन्मयता से लगे रहें।
1: जी हाँ साथियों, ये थी हेलेन केलर के बारे में रोचक जानकारी।
0: उन पर हमने रेडियो कार्यक्रम भी बनाया है, लेकिन ये जानकारियाँ अतिरिक्त हैं। श्रोताओं, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: हेलेन केलर की किस पुस्तक का अनुवाद दुनिया की 50 से भी अधिक भाषाओं में हो चुका है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं।
0: हेलेन केलर की किस पुस्तक का अनुवाद दुनिया की 50 से भी अधिक भाषाओं में हो चुका है?
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर
0: और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। इस पर आप अपना संदेश और उत्तर जरूर भेजें।
1: जी, तो अब चलते हैं उमंग प्रसारण के कार्यक्रमों की कड़ी में। श्रोताओं, कहते हैं कि एक चित्र में 1000 वाक्य होते हैं। आज हम सुनेंगे एक ऐसे महान भारतीय चित्रकार के बारे में जिसने भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया। हम कह सकते हैं कि उनके बिना भारतीय चित्रकला लगभग अधूरी है।
0: और श्रोताओं, वे महान चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा। आइए सुनते हैं उनके जीवन वृत्त पर आधारित कार्यक्रम
1: राजा रवि वर्मा।
2: अरे अरे, तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवारी गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
3: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं।

0: जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
1: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई। उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
2: मंगला,
3: हाँ?
2: देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
3: ठीक है।
2: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना?
3: हाँ हाँ।
2: उठाकर मुझे दे।
3: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
2: हाँ।
3: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
0: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
2: ये, हाँ, ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
3: अरे वाह।
2: और ये इसकी पूंछ।
3: अरे, तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
2: अच्छा ले, कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
3: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
2: ओ, बना तो सही। ले, पकड़ कोयला, पकड़।
3: ठीक है।
2: अब बना।
1: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
3: भाई, अब क्या होगा? माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
2: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
3: ठीक है,
2: चल चल चल चल चल। हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
0: कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
4: अरे, ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने। देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
1: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी, इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
5: कहाँ है कोच्चू और मंगला? है
6: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था। आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोच्चू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई, विद्वान नीलकांतन भट्टातिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं। समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई। नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। यह हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है। रवि
2: जी,
0: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो। बराबर अभ्यास करो।
2: जी। रवि वर्मा यही करने लगे, तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेनसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
0: मिस्टर जेनसन,
3: यस,
0: जब आप चित्र बना रहे हों, तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
3: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा। मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
0: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
4: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेनसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
3: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
4: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले, अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
2: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
4: पौराणिक कथानकों वाले चित्रों व देवी देवताओं के चित्रों का महलों से लेकर झोपड़ियों तक में आदर सत्कार हुआ। वो इसलिए कि उन्होंने इन चित्रों को प्रेस लगाकर छापा। ये चित्र छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आकार में छपे और कम मूल्य पर खूब बिककर घर घर में पहुंचे। सन 1906 में अपनी आयु के 58 वर्ष तक वो कला की साधना में बराबर लगे रहे। उन्होंने भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में जो कार्य किया उसने उन्हें अमर बना दिया है। वो सचमुच चित्रकारों में राजा थे। भारतीय चित्रकारों में अकेले एकमात्र राजा।
5: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम राजा रवि वर्मा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
6: श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि प्रचलित साहित्य में सबसे अधिक चालाक किस जानवर को माना जाता है?
5: कुछ मैं बताऊं विमलेश जी? मुझे तो लगता है कि लोमड़ी को ही प्रचलित साहित्य में सबसे अधिक चालाक माना जाता है।
6: बिल्कुल सही। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
5: चालाक लोमड़ी,
6: और जानते हैं कि किस प्रकार की चालाकी उसने दिखाई।

प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? उसने नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: बेचारा कौवा अपनी रोटी गंवा बैठा ना।
1: क्यों भला?
0: क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई। बच्चों, हमें हमेशा झूठी प्रशंसा करने से और झूठी प्रशंसा सुनने से बचना चाहिए।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चालाक लोमड़ी और आपने ये भी जाना कि किस प्रकार की चालाकी चालाक लोमड़ी ने दिखाई।
3: बिल्कुल। और अब समय को देखते हुए आप सभी श्रोताओं से हम आज के लिए आज्ञा चाहते हैं। कल फिर इसी समय
2: नए उमंग के साथ आप सबसे मुलाकात होगी उमंग में। तब तक के लिए अजीत
3: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
5: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स, यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
1: और इन सब का मैं बताता हूं सार, मिलिए डॉक्टर से न करें विचार अगर दिखें टीबी के आसार।
2: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं।

0: चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है, फाइबर कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है, इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले एक से दो उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक, समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा। बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए। यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

धरती मेरी धरती प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की कड़ी महासागर वातावरण का आपसी तालमेल और जीवन। पिछली कड़ी में आपने सुना सूरज की ऊर्जा ने धरती पर जीवन संजोने में एक अहम भूमिका निभाई है, पर इस निरंतर चलते जीवन को धरती पर मौजूद महासागरों एवं वातावरण ने भी अपनी प्यार भरी थपकियां दी। तो आइए सुनते हैं महासागर वातावरण का आपसी तालमेल।

0: तारे जमीन, अरे हमारे तारे कहाँ गए? वसुधा
1: जी,
0: अरे ये मानव और सृष्टि उठे कि नहीं अभी तक, और विवेक स्टेशन पहुंचा कि नहीं?
1: देखती हूँ। मानव सृष्टि, मानव मानव उठो, चलो उठो सृष्टि।
2: क्या मम्मी, संडे के दिन तो सोने दो।
3: हाँ मम्मा, पापा भी कितनी जोर से चिल्लाते हैं।
1: अरे चिल्लाएंगे नहीं बेवकूफों, सूरज आसमान पर चढ़ गया और तुम दोनों उठते ही नहीं हो। चलो उठो, ब्रश वगैरह करो, उठो अब।
3: अरे मम्मी, ये विवेक भैया कहाँ गए?
1: अरे तुम्हारे पापा के कॉलेज के दोनों के दोस्त डॉक्टर ब्रजमोहन और उनकी पत्नी डॉक्टर अल्पना और उनके एक और सहपाठी डॉक्टर शमसुल इस्लाम आ रहे हैं आज।
4: डॉक्टर शमसुल इस्लाम?
1: हाँ।
4: यानी कि इस्लाम अंकल? जो मुझे बहुत डांटे थे। लेकिन वो क्यों आ रहे हैं यहाँ पर?
1: मानव ऐसे नहीं बोलते बेटा, तब तुम बहुत छोटे थे और इस्लाम भाई साहब को बहुत तंग करते थे, अब तो तुम काफी शरीफ हो गए हो ना।
3: ये और शरीफ? अरे मम्मी, इस्लाम अंकल पहले तो सिर्फ डांटते थे, अब तो ये शरीफ मानव पिटने के लायक है।
4: पिटने के लायक है? पर मम्मी ये सब यहाँ पर आ क्यों रहे हैं?
0: मानव मानव और सृष्टि फटाफट तैयार हो जाओ। अरे भाई, ये तीनों हमारे देश के जाने माने समुद्र और मौसम विज्ञानी हैं। पता है डॉक्टर इस्लाम तो 3 बार एंटार्क्टिका जा चुके हैं।
4: बहुत अच्छी बात है पापा, लेकिन ये हमारे घर क्यों आ रहे हैं?
1: चुप मानव, अगर दोबारा ऐसा बोला ना तो बहुत पिटाई होगी।
4: लेकिन
1: घर पर मेहमान आ रहे हैं तो खुश होना चाहिए ना बेटा, बार बार एक ही रट लगा रखी है, क्यों आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं। अब चुपचाप जाकर नहाओ, चलो।
3: वाह वाह मम्मी, मानव की सुबह का डांट से श्री गणेश।
0: अरे मानव बेटा, दिल्ली में डॉक्टर ब्रज, डॉक्टर अल्पना और डॉक्टर इस्लाम का समुद्र और

0: मुझे डांट पड़ी और आप सब हंस रहे हो।
1: अरे मानव क्यों दुखी होता है रे, तेरे इस्लाम अंकल तुम सबको इतना प्यार भी तो करते हैं ना।
2: Exactly.
1: तेरे लिए डांट के बाद खिलौने भी तो लाए थे, याद है ना?
3: और वो भी इसने उनके सामने ही बराबर कर डाले थे।
2: वैसे मेरे ये तीनों दोस्त तुम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। पता है डॉक्टर इस्लाम तो खुद ही हमारे यहाँ रुकना चाह रहे थे और तुम्हारे बारे में तो वो पूछ भी रहे थे मानव।
0: बाप रे, अगर उन्हें मैं अभी तक याद हूँ तो मैं जल्दी से नहा धोकर अच्छी तरह से तैयार हो जाता हूँ।
1: जल्दी जाओ। चलो इस्लाम भाई साहब के डर से संडे को सुबह सुबह नहाने तो गया मानव।
2: सही बात है, उनको यही रोक के रखना
1: पड़ेगा। बिल्कुल।
2: लो अब लगता है आ गए। मानव मानव जरा दरवाजा तो खोलना।
1: अरे आप भी किसे आवाज लगा रहे हैं? मानव बेचारा तो इस्लाम भाई साहब के डर से पहले ही अपने कमरे में चुपचाप किताब खोलकर बैठ गया है।
2: अच्छा ठीक है, चलो मैं ही जाकर दरवाजा खोलता हूँ। अरे आओ आओ ब्रदर इस्लाम, कैसे हो तुम सब?
1: नमस्कार।
4: बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक।
5: भाई बहुत वर्षों बाद मिलना हो रहा है। नमस्ते भाभी।
1: नमस्कार भाई साहब।
5: ये मेरी पत्नी और सहयोगी डॉक्टर अल्पना है।
1: नमस्ते भाभी जी।
0: नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी।
2: नमस्ते नमस्ते। और भाई इस्लाम और बताओ कैसा चल रहा
6: है? हम तो ठीक है, आप सुनाओ कैसे?
2: सब खैर।
6: भैया तुम्हारा विवेक भैया तो बहुत समझदार।
7: थैंक यू अंकल।
6: बोली है ना 100 रुपए मांग रहा था, सीधे 40 करा दिए।
2: अच्छा, मुझसे तो 40 के 100 ले लेता। वैसे भाई डॉक्टर इस्लाम अब इसका नाम विवेक ऐसे ही थोड़े ही रखा है।
1: विवेक कौन है? आइए ना आप लोग, नाश्ता तैयार है।
2: नाश्ता तैयार?
1: नाश्ता तैयार है।
2: आप लोग लीजिए ना, सब लोग
1: अच्छा लगा भाई साहब।
6: हाँ तो सृष्टि बेटे कैसी हो?
8: मैं ठीक हूँ अंकल।
6: हाँ ठीक हो? अरे आज सूर्य प्रकाश, तुम्हारा वो शैतान बेटा क्या नाम है उसका? हाँ मानव। अरे भाई वो मानव दिखाई नहीं दे रहा।
1: मानव कहाँ है? मानव मानव मानव, देखो इस्लाम अंकल बुला रहे हैं तुम्हें।
2: अब ना
8: अंकल। अंकल मानव आपकी 5 साल पहले की डांट अभी तक नहीं भूला।
6: बिल्कुल सही है। चलो तुम्हें मैं ही बुला लेता हूँ। मानव, अरे मानव कहाँ हो?
2: लो आ गया मानव।
8: नमस्ते अंकल।
6: नमस्ते नमस्ते।
8: नमस्ते आंटी।
0: नमस्ते बेटा।
6: भाई मानव बहुत बड़ा हो गया। अरे इधर आओ।
8: जी अंकल।
6: क्यों बच्चे कैसे हो?
8: मैं ठीक हूँ।
6: हाँ भाई तो कौन से क्लास में आ गए?
8: मैं 4th क्लास में।
0: अरे वाह मानव तो वाकई बड़ा हो गया।
7: अंकल आपका लेक्चर समुद्र और वातावरण विषय पर है ना?
5: हाँ विवेक, मैं और अल्पना वातावरण पर बोलेंगे और डॉक्टर इस्लाम महासागरों और समुद्रों तथा वातावरण के आपसी तालमेल पर बताएंगे।
8: अंकल महासागर और वातावरण का आपस में क्या तालमेल है?
6: अरे वाह मानव, लगता है हमारा लेक्चर तो अभी से शुरू। क्यों है?
0: बेटा पहले नाश्ता कर ले, फिर तुम्हारे सभी सवालों का जवाब देंगे। ठीक है
2: जी। चाय ले।
5: और हाँ, जब तक हम हैं तब तक मानव को रोज कम से कम 4 सवाल जरूर पूछने होंगे। ठीक है मानव?
8: जी अंकल।
6: चलो जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, तब तक मानव तुम कुछ सवाल सोचते रहो। क्यों मानव?
8: जी।
2: थोड़ा शुगर पास करना
1: है।
8: हाँ अंकल, आप बता रहे थे कि महासागर, सागर, वातावरण और भूमि का आपसी तालमेल है।
6: हाँ बेटे सृष्टि, चलो मैं तुम्हें से पूछता हूँ कि धरती की 3 मुख्य प्रणालियाँ कौन सी हैं?
8: प्रणालियाँ क्या मतलब अंकल?
5: बेटे मानव, हमारा प्रणाली से मतलब है वो मुख्य तंत्र या सिस्टम जो इस धरती पर जीवन बनाने तथा बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है।
8: ब्रज अंकल, जीवन के लिए आवश्यक है हवा, पानी और खाना यानी भोजन, है ना?
0: बिल्कुल ठीक कहा दीदी, इन तीनों के बिना, खास करके भोजन के बिना तो जीवन होगा ही नहीं।
1: सृष्टि बेटे, तुमने एक आम व्यक्ति के रूप में बिल्कुल ठीक कहा।

0: अगर हम वैज्ञानिक रूप से धरती के बदलते मौसम, जलवायु, पेड़ पौधे, पर्यावरण, तापमान आदि का एक भौतिक इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं तो हम थोड़ा और बड़े और व्यापक स्तर पर जाते हैं।
1: आंटी, मेरे हिसाब से धरती के तीन मुख्य तंत्र होंगे, भूमि, महासागर और वातावरण।
2: वेरी गुड,
3: बिल्कुल सही। देखो सृष्टि और मानव, जो तुमने कहा वो भी ठीक था, पर विवेक ने इसे एक बड़ी प्रणाली समझते हुए हवा को वातावरण, पानी को महासागर तथा आवास एवं खाने को भूमि का हिस्सा बना दिया।
0: विवेक, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। हालांकि आवास एवं भोजन हमें पानी में भी उपलब्ध हैं, इसलिए भूमि की यहाँ एक नई भूमिका हो जाती है।
4: कैसी भूमिका आंटी?
5: समझाते हैं। पर मानव, अपने सवाल भी सोचते रहना, अच्छा?
4: जी।
3: देखो, जैसा विवेक और डॉक्टर अल्पना ने बताया, भूमि, महासागर तथा समुद्र इसी धरती के तीन मुख्य तंत्र हैं, और इन्हीं तंत्रों का आपसी तालमेल हमें नए नए मौसम, खाद्य पदार्थ तथा जीवन देता है।
5: यानी हम पूरी धरती को अलग अलग तंत्रों की एक ऐसी अनूठी प्रणाली के रूप में देखते हैं, जहाँ सारे भौतिक पैमाने मिलकर हमारी इस धरती को अद्भुत एवं जीवन भरा ग्रह बनाते हैं।
0: यानी सभी तंत्रों की परस्पर क्रिया चलती रहती है, जिससे हवा, आंधी, बारिश, तूफान, चक्रवात आदि आते हैं।
4: वो कैसे आंटी?
3: तो मानव
4: जी,
3: पहले तुम तीन तंत्रों को अलग अलग रूप में समझ लो, फिर तुम्हें इनका आपसी संबंध आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मानव, अपनी स्कूल की कोई पुस्तक या कॉपी ले आओ जरा।
4: वो क्यों अंकल?
3: अरे भाई, तुमने मेरे सारे शोध पत्रों पर ड्राइंग बनाई थी, अब मैं तुम्हारी पुस्तक पर ड्राइंग बनाकर उनको जरा थोड़ा सा रंग दो। क्यों?
6: मम्मी।
7: अरे नहीं बेटा, क्या इस्लाम भाई साहब, आप भी ना, बेचारा मानव इतनी मुश्किल से तो हिम्मत जोड़ पा रहा है और आप उसे तोड़ने में लगे हुए हैं।
3: ये बात है। तो मानव, चलो किताब रहने दो, चलो अब ध्यान से समझो, कुछ पल्ले ना पड़े तो बता जरूर देना।
4: जी।
0: हाँ भाई, पिछले कुछ दशकों में धरती की प्रणालियों की जटिलता का अध्ययन करते हुए वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वातावरण, महासागर, भूमि और यहाँ तक सभी जीव जंतु, जिसमें मनुष्य भी शामिल हैं, सभी आपस में एक नाजुक तार से बंधे हुए हैं और किसी भी एक भाग की गतिविधि हर एक तंत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखती है।
4: हैं? नाजुक तार से बंधे हुए हैं? कौन सा तार? मैंने तो कोई तार नहीं देखा।
3: मानव। अरे भाई मानव, यही तो ऐसा तार है जो दिखाई नहीं देता पर महसूस सब करते हैं।
4: वो कैसे अंकल?
1: अब देख मानव, अब मैं पापा के स्कूटर पर रोज तुझे घुमाता हूँ, तुझे तो बड़ा मजा आता है ना?
4: हाँ भैया।
1: पर जो तुझे आजकल ज्यादा गर्मी लगती है, उसमें कहीं ना कहीं इस स्कूटर की भी भूमिका है।
4: स्कूटर का गर्मी से क्या लेना?
0: लेना कैसे नहीं मानव, स्कूटर, कार, बस, फैक्ट्री आदि से निकलने वाले धुएं में ऐसी गैसें होती हैं जो गर्मी बढ़ाती हैं।
7: देखा मानव, विवेक भैया के साथ तेरा स्कूटर पर लगाया गया फालतू चक्कर कैसे पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है।
2: बिल्कुल ठीक कहा सृष्टि। तो मानव, यही है वो अदृश्य धागा जिससे हम सब बंधे हैं, और हमारी जरा सी गड़बड़ी पूरे जीवन की डोर को ही तोड़ सकती है। अब समझ में कुछ आया मानव?
4: थोड़ा थोड़ा पापा,
2: थोड़ा।
3: चलो तुम्हें विस्तार से समझाते हैं। पहले वातावरण से शुरू करते हैं। अब मानव, जैसे तुम सागर से बहुत दूर यहां दिल्ली में रहते हो, तो तुम्हें लगता है कि सागर या महासागर की तुम्हारे जीवन में कोई भूमिका नहीं है, है ना?
4: हाँ अंकल।
0: पर बच्चों, ऐसा नहीं है। महासागरों और वातावरण का एक साथ एक एकल तंत्र के रूप में ही अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये एक समान पारस्परिक क्रिया तथा अदला बदली से बहुत नजदीकी से जुड़े हुए हैं।
3: हाँ बच्चों, दोनों ही महासागर और वातावरण अपने में होने वाली गतिशीलता के लिए ऊर्जा सूर्य से ही ग्रहण करते हैं, समझे?
5: और ताप या गर्मी में भिन्नता के कारण ही सघनता या दाब में भिन्नता आती है, और ये भिन्नता या फर्क ही हवा तथा महासागर प्रवाह का आधार होते हैं।
1: अंकल, ये महासागर सूरज से आने वाले ताप या ऊष्मा के भंडारण का भी तो काम करते हैं ना?
5: हाँ विवेक, और देखो, असल में महासागर जमीन की तुलना में ज्यादा गहराई तक गर्म हो जाते हैं।
0: हाँ, और जब ठंडी हवा इस गर्म पानी के संपर्क में आती है तो ये अपनी गर्मी या ऊष्मा वातावरण में छोड़ देते हैं। जो हवा महासागरों की सतह पर बहती है वो लहरें पैदा करती है और इस दौरान ये हवा जल वाष्प के साथ साथ पानी के तापमान के गुण भी अपने में समा लेती है।
2: हाँ तो भाई मानव, कुछ समझ आया?
4: शायद।
3: भाई ये क्या जवाब हुआ?
5: अरे भाई लगता है मानव को सब धीरे धीरे समझाना पड़ेगा।
0: अच्छा तो मानव, जैसा मैंने पहले बताया था, शुरुआत वातावरण से करते हैं।
4: जी।
0: वातावरण असल में गैसों का आवरण होता है जो पूरी धरती को अपने में समेटे हुए है।
3: हाँ, जब सूरज से आने वाली किरणें हमारी धरती के वातावरण में प्रवेश करती हैं, तो कुछ तो बादल और धूल के कारण वापस ऊपर की ओर परिवर्तित कर दी जाती हैं और कुछ भू सतह की ओर बढ़ती हैं।
0: अच्छा, अब जो किरणें जमीन की सतह की ओर बढ़ रही हैं, वो जब सतह से टकराती हैं, तो कुछ विकिरण तो धरती सोख लेती है और कुछ विकिरण बर्फ पानी तथा अन्य परावर्ती सतहों से टकराकर वापस अंतरिक्ष की ओर लौट जाती हैं।
4: अच्छा।
0: और धरती से टकराकर ये इंफ्रारेड विकिरण में बदल जाती है, यानी धरती भी ऊष्मा लौटाती है।
5: अब हमारे वातावरण में कुछ गैसें होती हैं, जो अपने खास गुणों के कारण बाहर निकलने वाली लंबी तरंगों वाली इंफ्रारेड विकिरण को बचकर नहीं जाने देती और उनकी ऊर्जा को सोख लेती हैं। इस कारण ये वापस धरती से टकराती हैं और सतह के तापमान में बढ़ोतरी करती हैं।
3: ये घटना धरती के समूचे इतिहास में होती रही है और इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, समझे?
4: जी।
3: बगैर वातावरण और ग्रीन हाउस प्रभाव के यह धरती बर्फ से जम जाएगी और यहाँ जीवन संभव नहीं होगा, समझे?
4: समझ गया अंकल। पर अब मुझे ना खेलने जाना चाहिए।
3: अरे अभी से?
4: मानव
3: अभी कहाँ चले, अभी तो मुझे तुमसे पुराना हिसाब किताब पूरा करना है।
4: पर वो...
5: और बेटे मानव, तुमने चार सवाल भी तो नहीं पूछे।
4: जी वो बेचारा मानव फंस गया। अंकल आपने सारी बातें इतनी अच्छी तरह से समझाई है कि कोई सवाल पूछने के लिए ही नहीं है।
3: क्या बात है मानव, भाई हमने समझाया कहाँ है, अभी तो समझाना है भाई।
2: वैसे मानव बेटा
4: जी,
2: जीवन में बहुत कम मौके आते हैं जब सवाल पूछने का अवसर मिलता है और उनके जवाब जानने का भी, इसलिए भाई मेरा मानना है कि ऐसे मौकों को खोना नहीं चाहिए।
7: बिल्कुल।
2: और इसलिए अभी बैठ जाओ, खेलना बाद में, ठीक है?
4: ठीक है पापा। अच्छा अंकल, समुद्र में गति को मापने की इकाई को नॉट क्यों कहते हैं?
5: अरे वाह मानव बेटे, तुम्हारे पास तो बड़े रोचक सवाल है।
4: जी
5: भाभी, मानव के इसी सवाल पर एक एक चाय हो जाए।
7: अरे बिल्कुल भाई साहब, आपने कहा और अभी लेकर आती हूँ।
2: पेट में नॉट पड़ रही है,
3: नॉट पड़ रही है।
0: हाँ तो मानव, तुम्हारे इस रोचक सवाल कि समुद्र में गति मापने की इकाई नॉट क्यों है का जवाब अब ध्यान से सुनो। भाई पुराने समय में नाविकों द्वारा गति नापने की विधि से ये नाम पड़ा है।
4: अच्छा।
5: असल में पुराने समय में नाविक एक रस्सी जिसके हर 14.4 मीटर पर एक गांठ बंधी होती थी, उस एक सिरे को लकड़ी के लट्ठे से बांधकर समुद्र में फेंक देते थे।
3: अब ये लकड़ी का लट्ठा अपने साथ रस्सी को खींचता, अब हर 28 सेकंड में कितनी गांठें लट्ठे ने खींची हैं, इससे नाविक जहाज की गति का पता लगाते हैं। गांठ को अंग्रेजी में नॉट कहते हैं, इसलिए नाम पड़ गया।
0: आज एक नॉट मतलब 1.85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति होती है, समझे?
4: जी आंटी।
2: अरे मानव, तुम बेकार में अपने इस्लाम अंकल से डरते हो, देखो वो तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं।
4: हाँ पापा।
3: मानव ज्यादा खुश मत होना, सारी बातें खत्म करके मुझे तुम्हारी सब किताबों में अभी ड्राइंग भी बनानी है।
4: मम्मी
7: क्यों तंग करते लीजिए भाई साहब बच्चे को, लीजिए चाय लीजिए, लीजिए भाभी जी।
3: हाँ थोड़ी ब्रश तुम भी लो ना
6: जी।
3: क्या बात है,
1: एक सवाल था। वातावरण की गैसों से आने वाली ऊर्जा और ऊर्जा छोड़ने के बीच में संतुलन बन पाता है ठीक अंकल, पर वातावरण में कौन कौन सी गैसों का स्तर है?
3: हाँ तो विवेक, अब अगर शुष्क हवा में देखें तो मुख्यतः नाइट्रोजन लगभग 79% है।
1: अच्छा,
3: ऑक्सीजन 20%
1: और
3: आर्गन करीब 1% के आसपास है।
1: अच्छा,
3: जबकि वाष्प जो भिन्न भिन्न मात्रा में वातावरण में मौजूद है एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, समझे?
0: और अन्य ग्रीन हाउस गैसें बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में वातावरण में मौजूद होती हैं, जिन्हें पार्ट्स पर बिलियन यानी PPB में मापते हैं।
4: अल्पना आंटी, पार्ट्स पर बिलियन का मतलब हुआ 1/1000 हिस्सा। इतनी छोटी मात्रा में इन गैसों का क्या फायदा या नुकसान?
5: नहीं सृष्टि बेटे, ऐसा नहीं है। हाँ? एक सूक्ष्म गैस जिस पर आजकल बहुत ध्यान दिया जा रहा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
3: इस कार्बन डाइऑक्साइड का वर्तमान में स्तर 0.034% के लगभग है और इतनी सी मात्रा में ये अच्छी खासी गर्मी पैदा करने में सक्षम है, जानते हो?
7: मिसेस मल्होत्रा आइए।
4: ओह जी,
7: भाई साहब ये हमारी पड़ोसन है मिसेस मल्होत्रा।
8: ओ जी नमस्कार।
2: नमस्कार नमस्कार, आइए आइए मिसेस मल्होत्रा, कैसे आना हुआ आपका?
8: ओ जी वो अपना मानव आज हैप्पी के साथ खेलने नहीं आया, इसलिए देखने आई थी, कहीं तबीयत तो नहीं खराब है जी?
4: हाँ आंटी, मानव की तबीयत तो वाकई इस समय बहुत खराब है।
7: नहीं नहीं मिसेस मल्होत्रा, ऐसी कोई बात नहीं, असल में ये मानव के पापा के दोस्त डॉक्टर इस्लाम, ये हैं डॉक्टर ब्रजमोहन और आप उनकी पत्नी डॉक्टर अल्पना जी हैं।
8: नमस्कार।
7: ये मानव को वातावरण और महासागरों के बारे में कुछ समझा रहे थे इसीलिए।
8: ओ जी आप डॉक्टर हो तो बीमारी शिमारी की बातें करो ना जी, ये समुद्र से हमारा क्या लेना देना, और वातावरण तो पहले ही खराब है ना जी।
2: और नहीं नहीं परजाही जी, असल में ये बीमारी वाले डॉक्टर नहीं बल्कि समुद्र और वातावरण पर शोध करने वाले वैज्ञानिक हैं। आखिर आप बैठिए ना हमारे साथ, चाय पीजिए, आइए बैठिए।
8: जी भाई साहब जरूर बैठूंगी, पर वसुधा जरा चाय में थोड़ी चीनी ज्यादा डालो।
2: मुझे लगा था चीनी कम डालनी।
7: दुनिया का कम पे जोर है, आप ज्यादा कहती है तो ज्यादा चीनी वाली चाय लाती हो।
4: हाँ तो अंकल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अलावा आजकल मीथेन गैस के बारे में भी बहुत बातें हो रही हैं, है ना?
3: हाँ सृष्टि बेटे बिल्कुल ठीक कहा, मीथेन भी एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है और इसके बढ़ने का एक प्रमुख कारण बढ़ती मानव आबादी है।
8: ओ जी डॉक्टर साहब, बढ़ती मानव आबादी पर अपनी कॉलोनी में तो एक ही मानव है और वो है ये हमारा मानव पुत्र।
5: नहीं नहीं मिसेज मल्होत्रा जी, असल में इस्लाम का मतलब पूरी मानव सभ्यता से है।
8: ओ जी ओ।
5: हाँ तो सृष्टि बेटी, हमारी मवेशियों की बढ़ती आबादी तथा मुख्यतः धान की खेती से मीथेन का स्तर तेजी से बढ़ रहा है।
0: पहले मीथेन का स्तर करीब 0.003% था जो अब बढ़कर 0.018% हो गया है।
4: अच्छा,
0: ऐसे ही पहले कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 18वीं सदी की शुरुआत में 0.028% था जो अब 0.034% के करीब है।
7: पीजिए भाभी जी चाय, चीनी पूरे 3 चम्मच।
8: थैंक यू वसुधा। ओ जी डॉक्टर साहब, अब इतनी सी मात्रा बढ़ने से क्या होता है जी? अब चाय में चीनी 3 चम्मच डालो या 3.5 क्या फर्क पड़ता है जी?
3: मल्होत्रा भाभी जी, ये जानने के लिए तो आपको भी हमारे साथ रोज बैठना पड़ेगा। अभी तो हम वातावरण की बात कर रहे हैं, फिर इन दोनों के बीच के परस्पर संबंध समझाएंगे तभी तो आप 3 चम्मच और 3.5 चम्मच का फर्क जान पाएंगे।
8: ओ जी इसमें तो बहुत टाइम लगेगा जी, मुझे तो मल्होत्रा साहब का और हैप्पी के लिए खाना भी तो बनाना है जी।
5: अरे नहीं नहीं नहीं, सारी बातें आज नहीं, धीरे धीरे करेंगे। अभी तो आप ये भी जानेंगे कि कैसे जंगल कार्बन और नमी का भंडार होते हैं और कैसे समुद्री जीव कार्बन सोखते हैं।
0: अब महासागरों में वातावरण के कारण महासंचार होता है और इससे समुद्री पानी के गुणों में अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है।
3: अब जिस वातावरण की हम बात कर रहे हैं, ज्यादातर उसकी प्रकृति महासागरों पर निर्भर करती है और ज्यादातर उसकी ऊर्जा का स्रोत भी महासागर ही होता है।
5: बारिश, आंधी आदि सभी इन महासागरों और वातावरण के आपसी तालमेल का ही नतीजा है। चलो मानव, आज तुम हैप्पी के साथ खेलने जाओ, पर कल हैप्पी को भी जरूर लेकर आना। और हाँ, तुम्हें और हैप्पी को मिलकर 4 सवाल जरूर पूछने होंगे।
3: एक मानव
4: जी।
3: हाँ। चलो सूर्य प्रकाश, हम भी थोड़ा टहल आए, बैठे बैठे थक गए, और लौट कर मुझे मानव की किताबों पर ड्राइंग भी तो करनी है।
4: अरे मम्मी
7: बेटा, कर लेने देना अंकल को ड्राइंग एक दिन।
3: अच्छा मिस्टर मल्होत्रा, आप भी आना कल।
8: हाँ जी,
3: खूब सारी बातें करेंगे।
8: जरूर आऊंगी। वैसे मेरे हैप्पी को महासागरों के बारे में खूब पता है जी।
0: हाँ। तो चलिए कल उससे भी मिल लेते हैं।
2: आओ इस्लाम ब्रज, थोड़ा टहलाए। तुम भी चलो विवेक।
4: मम्मी, इस्लाम अंकल और ब्रज अंकल को कितनी जानकारी है ना?
7: बिल्कुल है बेटा, और तुम्हारी अल्पना आंटी को भी।
4: लेकिन मम्मी, वो इस्लाम अंकल मेरी किताबें गंदी कर देंगे।
0: भाई अब वो तो बाद में ही पता चलेगा, अभी तो तुम जाओ और खेलाओ। जाओ।
8: अच्छा वसुधा, मैं चलती हूँ, कल अपने हैप्पी को लेकर आऊंगी। अच्छा सृष्टि।
4: अच्छा आंटी।
8: अच्छा अल्पना जी, बाय बाय
4: बाय बाय
7: बाय बाय। हाय।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग की दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 सो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग की दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 सो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
4: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
7: So where are you? The world is here at Sharda University.
8: शादी के बाद भी ऐसे ही रहना,
9: बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं है।
10: अरे वाह, आज तो एकदम शाहरुख खान निकल रहा है।
9: सच्ची? ये ऐसे

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
5: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
6: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
7: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
5: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: सुनो शारदा 90.8 FM।
8: चोरी चोरी देखे जाए पिया, गोरी आन नृत्य करे थुमकिया थुमकिया थुमकिया।

हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: mixing in the house.
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
1: तो मतलब इस क्लास का सार है, लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
2: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़े। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले

उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें। यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: अरे हमारे यहाँ कचरा तो काम वाली भाई या मम्मी उठाती है, ये अंकल कचरा क्यों उठा रहे हैं?
1: चमन टीचर ने बताया था ना,
2: सभी काम सब लोग कर सकते हैं, पुरुष या महिला।
1: सफाई करना तो हम सभी का काम है। अपा एक मिनट, मैं भी कचरा उठाने में आपकी मदद करूँगी।
3: ठीक है चलो, तो हो जाए कचरा पार्टी।
4: कचरा पार्टी।
5: बर्थडे पार्टी और घर से जो भी कचरा निकला है उसका सही उपयोग और प्रबंधन करना जरूरी है, तो हो जाए कचरा पार्टी।
2: कचरे का सही उपयोग और प्रबंधन मतलब
5: घर पे, स्कूल में या बाहर सड़क पर कचरा यूं ही नहीं फेंकना। ये कचरा हमारे वातावरण, जमीन, हवा, पानी को प्रदूषित करता है।
6: सड़क पर यहाँ वहाँ कचरा फैलाओ तो कितनी बुरी बदबू आती है।
0: और कचरे के आसपास चूहे, छुछुंदर, मक्खी मच्छर का घर बन जाता है और कीड़े भी लग जाते हैं
1: जो हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए कचरे को हमेशा कूड़ेदान में डालो।
0: रुको तारा, पहले ये देख लो ये कचरा किस तरह का है।
1: कचरा
0: ये देखो कि ये सूखा कचरा है या गीला कचरा।
5: जो आसानी से सड़ जाए वो है गीला कचरा, और जो ना सड़े या कई सालों बाद सड़े वो है सूखा कचरा।
1: ये सड़ सकता है, इसका मतलब ये गीला कचरा है।
0: बहुत अच्छे तरह, हमेशा सोचो कि कचरा दोबारा किस काम आ सकता है।
3: इस गीले कचरे को गमले में डाल के मिट्टी से ढक दें तो कुछ समय के बाद ये गीला कचरा जैविक खाद बन जाता है।
0: तो अंकल क्या हम बचा हुआ हलवा भी गमले में डाल सकते हैं? ये भी तो गीला कचरा है।
3: नहीं चमन, पका हुआ खाना गमले में नहीं डालना, उसे तुम जानवरों को खिला सकते हो।
1: वाह, कचरा भी आएगा तुम्हारा काम। तो ये गया गीले कचरे में,
6: और मेरे पास है सूखा कचरा।
0: वाह वाह वाह वाह, तुम सब समझ गए। तो इस तरह गड़बड़ी सूखे और गीले कचरे को अलग कर लिया, और अब ऐसे कचरे की बात करते हैं जो हजारों साल तक सड़ते नहीं, और कुछ कचरे तो खतरनाक भी होते हैं।
1: हजारों साल तक सड़ते नहीं
4: और खतरनाक भी होते हैं,
0: जैसे प्लास्टिक जो हजारों सालों तक ऐसे ही रहेगा, या फिर टूटा शीशा, ब्लेड वगैरह। अगर इन्हें इस कचरे में मिला दिया और कहीं जानवरों ने खा लिया तो
1: या फिर कहीं शीशे के टुकड़े काम वाले दीदी या कूड़ा इकट्ठा करने वाले भैया को चुप गए तो।
3: इसलिए कोशिश करो कि ऐसी खतरनाक चीजों को अलग से अखबार में लपेट कर बाजार जाते हुए कपड़े का थैला साथ ले लो, ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करना पड़े।
0: और अगर करना ही पड़ जाए तो उसे बार बार इसी तरह से इस्तेमाल करो, ना कि कूड़े में फेंक दो।
4: वाह, बार बार इस्तेमाल।
6: जैसे इस गिफ्ट रैपिंग पेपर को हम अपनी नोटबुक या किताबों में कवर की तरह चढ़ा सकते हैं।
1: आइडिया।
0: अरे ये क्या खुसर खुसर चल रही है।
1: अब आप देखिए अपा, हमारी कचरा कला। कचरा पार्टी की कचरा कला।
0: हमने कचरे को दोबारा इस्तेमाल करके अपने वातावरण को बचाया।
7: अरे वाह, इसे तो मैं अपने टेबल पर सजाऊंगा।
2: तो तुम सब कब कर रहे हो कचरा पार्टी?

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
5: शारदा। ओले ओले ओले। ओ शोनक। हेलो कौन?
6: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर। आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
7: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
6: जल्द मिलते हैं।
5: हेलो हेलो हेलो।
8: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
9: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। भाभी, लो मिठाई खाओ।
1: अरे, किस खुशी में?
0: वो सीता क्लास में फिर से फर्स्ट आई है।
1: वाह, तेरी बेटी तो बिल्कुल तूफान मेल है। मेरी रिंकी तो हमेशा थकी थकी, नंबर भी कम आते हैं, थकान मेल कहने लग गए हैं सब उसे।
0: ओहो, भाभी रिंकी को अनीमिया तो नहीं?
1: अनीमिया?
2: अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
1: ललिता, लो मिठाई खाओ।
0: अरे वाह, रिंकी भी थकान से तूफान बन गई।
3: आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज

0: Here at Sharda University.
1: Hi, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो।

0: सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं, और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का

0: कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
0: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
0: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन

डायरेक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
0: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
0: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा 90.8
4: FM। शिशु के 6 महीने के होने के बाद
5: माँ के दूध के साथ जरूरी है बच्चे के लिए पौष्टिक आहार।
4: केवल माँ का दूध
5: नहीं बना पाएगा बच्चे को मजबूत,
4: अतिरिक्त पोषण की जरूरत।
5: दूध के साथ ऊपरी आहार की अहमियत।
6: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
7: हाय मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: पूड़ी लगा दे।
1: देख लो, 2 महीने के इलाज में इतना सुधार है तो अब तो मैंने दवा खानी भी बंद कर दी है।
2: टीबी की दवा तो 6 से 8 महीने लगातार चलती है, इसका मतलब कि आपने डॉट्स का कोर्स बीच में ही बंद कर दिया।
1: ये क्या, मेहंदी अधूरी क्यों छोड़ दी?
2: तुम डॉट्स का इलाज अधूरा छोड़ सकती हो और सोचती हो कि बात बन जाएगी? जानती हो ना, अधूरा इलाज यानी टीबी लाइलाज।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
2: भाभी, कल ही डॉट सेंटर चली जाना।
1: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। HIV और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक HIV रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग HIV को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर HIV रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूँ कि हर HIV मरीज तुरंत टीबी की जाँच कराएं और सभी टीबी मरीज भी HIV की जाँच कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था मुझे पूरा करना ही होगा।
1: लो माँ भी आ गई। माँ देखो तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
0: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
2: हाँ माँ जी।
3: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
4: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: बेटा दाई माँ से बात कर लेना, पर सब का समय नजदीक आ रहा है, उन्हें कभी भी आना पड़ सकता है।
1: दाई क्यों माँ, गांव में अस्पताल है, बच्चे का जन्म वहीं कराएंगे।
0: पर बेटा हमारे खानदान में सब लोग दाई के हाथों से ही जन्म लेते हैं, अब ये अस्पताल अस्पताल।
1: पहले का समय कुछ और था, अब तो इतनी सुविधाएं हैं, बच्चे का जन्म अस्पताल में ही होगा।
2: बिल्कुल सही कह रहा है आपका बेटा।
3: अरे आशा बहू आओ आओ।
2: सुरेश की अस्पताल में प्रसव कराने की सोच एकदम सही है, अस्पताल में प्रसव सुरक्षित और फायदेमंद होती है। जैसे बच्चे का जन्म प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स के द्वारा होता है, प्रसव के बाद खतरे के लक्षण पहचानकर उनका तुरंत इलाज किया जा सकता है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है ताकि जच्चा बच्चा को कोई संक्रमण ना हो, खून की जरूरत पड़ने पर वो स्थिति संभाल सकते हैं। इसके साथ ही जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर माँ को प्रोत्साहन धनराशि भी मिलती है, और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत अस्पताल में जांचों, दवाओं, एम्बुलेंस, ऑपरेशन, खून और खान पान आदि की भी सुविधा बिल्कुल मुफ्त है।
0: बिल्कुल सही कह रही हो आशा बहू। सुरेश बच्चे का जन्म अब सिर्फ अस्पताल में ही होगा।
2: जी हुई ना बात, तो आप भी समझ गए ना, बच्चे का जन्म सिर्फ अस्पताल में, क्योंकि अस्पताल में प्रसव कराने से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है, इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो।

0: रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्ते, मेरा नाम सिया है। मैं 12 साल की हूँ और मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे को पढ़ना पसंद है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना और बातें करना पसंद है। मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ, घर पर गेम्स खेलती हूँ। सबसे ज्यादा तो मुझे भूतों की कहानी सुनना पसंद है। बहुत दिन पहले छुट्टी में मैं अपने गांव गई थी। गांव में मैं अपने दादा और अपनी दादी के साथ रोज घूमने जाती थी और फिर वहां जाकर मैं बहुत बीमार हो गई। मेरे गले पर एक बड़ा गोला जैसा बन गया था। अप्पा और अम्मा काफी डर गए थे। फिर वो मुझे गांव में डॉक्टर अंकल के पास ले गए। पता है, डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद कहा कि मेरे को तो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी हो गई है। अब पूछो कि टीबी क्या होती है? ये बीमारी बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया पता है ना, ये बहुत छोटे छोटे कीटाणु जैसे होते हैं। ये नजर भी नहीं आते। वैसे तो ये हमारे फेफड़ों पर हमला करती है, लेकिन इसके कारण हमारे शरीर के दूसरे हिस्से में भी इन्फेक्शन हो सकता है। पता है, मुझे तो टीबी एक भूत जैसी लगती थी, बहुत डराती थी। फिर ना मुझे डॉक्टर अंकल ने समझाया कि टीबी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका पूरा इलाज हो सकता है। तब मैंने फैसला किया कि मुझे इस बीमारी से लड़ना ही होगा। इसके बाद 2 साल तक मेरा इलाज चला, क्योंकि ये वाली टीबी ना कुछ अलग तरह की थी। इतने दिन तक इलाज चलने के बाद भी मैंने तो सोच रखा था कि टीबी से लड़ती रहूंगी। इसकी दवा मुझे इतनी कड़वी लगती थी, फिर भी मुझे जूस के साथ ये दवा लेनी पड़ती थी। कभी कभी तो मुझे उल्टी भी होती थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर अंकल कहते थे कि अगर मुझे ठीक होना है तो दवा लेनी ही पड़ेगी। मैं रोज अपनी टैबलेट खाती थी और बहुत सारा अच्छा खाना भी खाती थी। मैं रोती भी थी, लेकिन हमेशा नहीं, सिर्फ कभी कभी, क्योंकि मैं बहादुर और स्ट्रांग हूँ ना। इसके बाद फिर कुछ ही दिनों में मैंने टीबी को हरा दिया। मैंने देखा कि ये भूत तो खुद ही डर कर भाग गया। मुझे बड़ा मजा आया। याद रखें, टीबी किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर हम अपना ख्याल रखें तो इसके बैक्टीरिया को फैलने से रोक सकते हैं। आप सब लोग टीबी के लक्षण ध्यान से सुने और याद भी रखें। आपको बहुत सारी खांसी होगी जो 2 हफ्तों के बाद भी ठीक नहीं होती। सीने में दर्द होगा, खांसी या बलगम में खून निकलेगा। इसके अलावा अगर खूब ठंड लगे, रात को पसीना आए, भूख ना लगे या बुखार आए और कमजोरी जैसे लगने लगे, तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत डॉक्टर अंकल के पास जाना। याद रखें कि आप भी टीबी को रोक सकते हैं। हमेशा मुंह ढककर खांसे, और यदि आपको टीबी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही टीबी की जांच करवाएं। टीबी की जांच एवं इलाज सरकारी अस्पतालों और कुछ निजी अस्पतालों में मुफ्त में करी जाती है। टीबी का इलाज पूरा करना जरूरी है। और हाँ, एक बात और, किसी भी टीबी मरीज के साथ भेदभाव कभी नहीं करना, क्योंकि उन्हें भी तो प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। टीबी का इलाज हो सकता है, आप इस बीमारी को हरा सकते हैं, जैसे मैंने हरा दिया। अच्छा, चलती हूँ, होमवर्क का टाइम हो गया।